0: कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.

0: वेलकम वेलकम दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उफ तेरी अदा गाना सुने थे आप, टेकन फ्रॉम द मूवी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। मुझे ये कभी समझा नहीं दोस्तों कि कार्तिक कॉलिंग कार्तिक ये मूवी का नाम कैसे हो सकता है भाई। बाय द वे मैंने कभी मूवी ये देखी नहीं है, आपने देखी है कि नहीं मुझे बताइएगा। दीपिका पादुकोण और फरहान अख्तर पिक्चराइज थी इस मूवी में, और ये गाना, जी हाँ डेफिनेटली ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ मेरे दिल पे एक अच्छी, मेरे चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि वाइब अच्छी है गाने की, बहुत ही कूल वाइब है। ऐसे ही आप सभी को गाने सुना रही हूँ या थी जो गाने आपके दिलों पे छा जाते हैं और आपके चेहरे पे लेकर आते हैं एक ब्यूटीफुल सी स्माइल। चलिए हमारे शो को आगे बढ़ाते हैं, बट कुछ फन मस्ती भी करते हैं भाई, क्योंकि आज संडे है एंड दिस इज अ फन डे। और हमारे फन एशिया का नाम भी है फन से शुरू होता है, जहाँ पे पूरा का पूरा फन मस्ती मजा चलते रहता है। तो एंड दिस रेडियो शो इज एंड दिस रेडियो प्रोग्राम इज ऑल अबाउट म्यूजिक फन मस्ती। तो चलिए आपको कुछ फन मस्ती करवाती हूँ। हमारा जो नंबर है ना दोस्तों, वो अपने स्पीड डायल पे रख दीजिए। थोड़ा सा आपका बॉलीवुड का नॉलेज टेस्ट करती हूँ, आपको ऐसे गानों की बीच बीच में वाली धुन सुनवाऊंगी और आपको वो बीच की धुन सुनकर आपको गाना पहचाना है। बहुत ही इजी पीजी सिंपल सिंपल, ये आपने कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ अपने यू नो पार्टीज में खेला होगा ये वाला गेम। धुन पहचानी है ये वाला गेम हम खेलेंगे। अगर आपको एकदम बहुत ही ज़्यादा नहीं धुन सुनवाने वाली हूँ मैं, आपको एकदम छोटी सी धुन ही सुनवाने वाली हूँ, लाइक 4-5 seconds और seconds, and then आपको फटाफट मुझे कॉल करके बताना है कि कौन सा है वो गाना, और अगर हो सके तो मैं आपको ऑन एयर लूंगी और आपको गाना भी गा के दिखाना है। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। तो रेडी है आप हमारे फर्स्ट धुन के लिए? ये रही हमारी पहली धुन, गौर से सुनिएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी धुन। जल्दी से जल्दी कॉल करके बताइए कि कौन सी धुन थी, और अगर आप मुझे मूवी का भी नाम बता पाए तो वल्ला वल्ला क्या ही बात है। अगर आपने सुनी नहीं है तो एक बार फिर से आपको सुनवाती हूँ। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, फिर से एक बार सुन लीजिए ये धुन। कोई हमें कॉल कर रहा है, चलिए लेते हैं उनको ऑन एयर। गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, यू लाइव ऑन एयर, हुज दिस? ओ कॉल कट हो गया। गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, यू लाइव ऑन एयर, हुज दिस?
1: हाय दिस इज रीमा।
0: रीमा जी बताइए कौन सा गाना था?
1: डांस पे चांस।
0: डांस पे चांस मार ले, तो थोड़ा सा गा के भी सुनाइए हमें।
1: दोस्तों
0: ये थी हमारी पहली धुन, ऐसे धुन आपको सुनवाती रहूंगी। बट चलिए भाई, अभी इतना अच्छे गाने का जिक्र हुआ है तो क्यों ना ये गाना ही सुन ले। एंजॉय दिस ट्रैक।

सुनिधि चौहान की आवाज में। सुनिधि दोस्तों, आप ये गाना बहुत ही तगड़ा गाना, बहुत ही दिल पे स्माइल लेकर आता है। एक वाइब के साथ ये गाना जब बजता है ना तो पैर तो अपने आप ही छिड़कने लगते हैं। जैसे ही बोलते हैं कि डांस पे चांस मार ली, जी हाँ, डांस पे तो सभी चांस मारते हैं। एंड दिस सॉन्ग इज क्लियरली प्रूव्स दैट, रब ने बना दी जोड़ी से। सुनिधि दोस्तों, आप ये बहुत ही प्यारा सा गाना अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान पे पिक्चराइज था। सब कुछ अच्छा था दोस्तों इस मूवी से, बट फिर भी मुझे ना लास्ट तक एक ही एक ही बात नहीं समझ में आई कि भाई बस अपने हस्बैंड को अगर मूंछ आ जाती है या फिर अपनी उसकी मूंछ अगर कटवा देते हैं तो आप अपने हस्बैंड को पहचान नहीं सकते। लाइक पूरी मूवी में वो अपने हस्बैंड को सिर्फ मूंछ की वजह से पहचान नहीं पाई थी कि जो राज पाजी थे वो उसके हस्बैंड ही थे। नहीं, राहुल थे कि राज थे, पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बट जी हाँ, इट्स जस्ट दैट विदाउट हस्बैंड वाला जो शाहरुख था वो उसका डांस पार्टनर था और विथ मूंछ वाला जो शाहरुख था वो उसका हस्बैंड था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन मूंछ शी वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पार्टनर। वेल, विद दैट आपको लेकर चलती हूँ अगली धुन की तरफ। हमारा जो नंबर है 9722355555, रख दीजिए अपने स्पीड डायल पे और रेडी हो जाइए ये वाली धुन को पहचानने के लिए। जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा गाना है, तो फिर वो गाना आपके लिए यहाँ पर जरूर प्ले करूंगी। और ये रही धुन।

0: ऑल राइट, तो ये थी दोस्तों आपकी धुन। कॉल आना शुरू हो चुके हैं, चलिए लेते हैं हमारे कॉलर को ऑन एयर। गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, ये लाइव ऑन एयर, हु इज दिस?
1: माय नेम इज पुष्पिरा।
0: बताइए कौन सा गाना था?
1: लड़की क्यों,
0: थोड़ा सा गा के सुनाइए।
1: लड़की क्यों न जाने क्यों लड़की से नहीं होती।
0: ऑसम, थैंक यू सो मच, दैट वाज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वेल, हमारे दूसरे कॉलर को लेते हैं दोस्तों ऑन एयर। गुड इवनिंग फनीशियर रेडियो, योर लाइव ऑन एयर, हु इज दिस?
2: हाय, दिस इज शिवानी।
0: शिवानी, बताइए कौन सा गाना था?
2: इज इट दिस लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों से नहीं होती।
0: जी हाँ, लड़की इसलिए लड़कों जैसी नहीं होती क्योंकि वो बेस्ट होती है। थैंक यू सो मच शिवानी फॉर कॉलिंग एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए दोस्तों, इतने अच्छे गाने का अगर जिक्र हुआ है तो वो गाना आपको सुनवा भी देती हूँ। एंजॉय दिस ट्रैक।

ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है। पहले पहले भंवरे जैसे पास पास मंडराए, फिर उसे वो ये कहकर तुमको वो टरकाए। समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम था, दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम था। जिस चेहरे पे मरते हैं वो बोरिंग हो जाए। फिर सुचित ने नजरें इनकी इधर उधर भटकी। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती, तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती। ओके दैट्स इट। जी हाँ, ये जो लास्ट वाला मोनोलॉग है इस गाने का, वो मुझे पूरा का पूरा याद है दोस्तों। अमेजिंग गाना दोस्तों, सुन रहे थे आप टेकन फ्रॉम द मूवी हम तुम। आई होप आप सभी को मेरा ये जो बॉलीवुड ट्रिविया का अंदाज है, जहाँ पर मैं आपको धुन सुनवा रही हूँ गाने की और आपको गाना पहचानने के लिए बोल रही हूँ, पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही मस्ती धुम मजा यहाँ पर चलते रहेगा, ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। दोस्तों अगली धुन की तरफ बढ़ेंगे, बट आपको बता देती हूँ कि ऐसी फन मस्ती करते करते या फिर ऐसे ही मेरे गानों को गेस करते करते अगर आपका कहीं कहते हैं नजर हटी, दुर्घटना घटी, ऐसा कभी होता है एंड इफ यू गेट इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट, जो कि मैं चाहती हूँ ये कभी भी ना हो, फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ या फिर आप एक स्लीप एंड फॉल इंसिडेंट में अगर आप इन्वॉल्व हो गए, तो अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपेंसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग with insurance companies can be stressful and you need an attorney that will make sure that you are compensated. You don't pay until you win. This is their policy. So for a free consultation, you can call them. The number to call is 469-300-0546 or you can

विजिट देयर वेबसाइट विच इज attorneyomar.com. जी हाँ, हो गया है हमारा इन्फॉर्मेशन सेगमेंट खत्म. अभी लेकर चलती हूँ आपको अगली धुन की तरफ. गौर से सुनिएगा ये वाली धुन, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है. 9723555555 स्टूडियो का नंबर रख दीजिए अपने स्पीड डायल पे और गौर से सुनिए ये वाली धुन. ये रही All right. दोस्तों 9723555555 है स्टूडियो का नंबर. एक बार फिर से आपको सुनवा देती हूँ धुन, ये रही, सुनिएगा.

जल्दी से जल्दी कॉल करके बताइएगा भाई कि कौन सा गाना है। बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है। जब तक आप सोच रहे हैं, जब तक आप मुझे कॉल करेंगे, तब तक आपको ये वाला गाना सुनवाती हूँ। एंजॉय।

भाई सारा, श्वेता और मोनिका ने तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। जो गाने की धुन आपको सुनवाई थी उन्होंने ये गाना बिल्कुल सही सही पहचान लिया है। गाने की धुन कुछ इस प्रकार सी थी दोस्तों, एक बार फिर से सुनिएगा। और इन तीनों ने गाना बिल्कुल सही पहचाना है। गाना इज नन अदर दैट हे शोना। तो चलिए, ये आप मेरे सारे शोनाओं हो तो आप ये गाना सुनिए। ये गाने के बाद आने वाला है छोटा सा ब्रेक। ये वाला फन मस्ती पूरा का पूरा कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के उस पार।

0: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
6: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
7: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur सफलता के योग
8: है। अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
12: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो।
14: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
16: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duct time.
17: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
13: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
12: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
13: सच में? बिल्कुल घर जैसा।
12: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
18: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at desigottalentus.com. Grand finale in Dallas. jealous because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
15: Nation ka fun station. Fun Asia Radio.

स्टेशन के फन स्टेशन फनी शहर रेडियो पर दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर के साथ ही आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, बट आज ये साथ 1 घंटे का बोनस अभी हमको और मिल गया है, तो आज का साथ 6 से 9 रहने वाला है। 3 घंटे के इस खूबसूरत से म्यूजिकल सफर में जुड़े रहते हैं आप भी मेरे साथ हमारे फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। तो दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा है, स्टूडियो की घड़ी में हो चुका है 36 मिनट्स पास 7। आपको एक अच्छा सा गेम खिलवा रही थी जहां पे मैं आपको धुन सुनवा रही थी गानों की और आपको बोल रही थी गाना पहचानने के लिए। ये अभी तक का तो बहुत ही अमेजिंग हो चला है, बट अभी जो अगली धुन मैं आपको सुनवाऊंगी इस गाने के बाद, उस धुन के लिए आपको मैं एक गिव अवे भी देने वाली हूँ। सो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ और इस गाने के बाद की धुन जो आने वाली है उस पे गौर फरमाइएगा और तुरंत फटाफट मुझे कॉल कीजिएगा। हमारा जो नंबर है 9722355555 अपने स्पीड डायल पे रख दीजिए। जैसे ही मैं आपको धुन सुनवाऊंगी आपको तुरंत फौरन बिल्कुल विदाउट एनी फर्दर डिले कॉल करना है और उसके बाद आप जीत सकते हैं एक अच्छा सा गिव अवे। तो चलिए पहले इस गाने की तरफ जाते हैं क्योंकि ये गाना इतना प्यारा है दोस्तों कि ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ चेहरे पे स्माइल तो आती ही है, बट एक अच्छा सा मीठा सा दर्द भी देता है। ये गाना बहुत ही प्यारा है, टेकन फ्रॉम द मूवी वीर सारा।

बहुत ही प्यारा सा दोस्तों गाना सुन रहे थे आप, फ्रॉम द मूवी वीर जरा, लता मंगेशकर जी की आवाज और सोनू निगम की आवाज में। तो चलिए भाई, इंतजार की घड़िया हो चुकी है खत्म। बोल रही थी आप सभी को कि ये अभी अगली धुन जो आपको सुनवाने वाली हूँ, इस धुन को पहचानने के बाद आपको मिल सकता है एक अच्छा सा गिव अवे। सो प्लीज हमारा जो नंबर है 9722355555 अपने स्पीड डायल पे रख दीजिए और गौर से ये धुन सुनिए। जैसे ही आपको धुन सुनने के बाद यू नो, गाने का समझ में आता है, तुरंत मुझे कॉल कीजिएगा और कॉल करके अगर आपने मुझे सही गाना बताया तो आप जीत सकते हैं फ्लेवर लाउंज। जी हाँ, हियर इज योर चांस टू विन अ दाल मखनी और धाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट विच इज लोकेटेड एट प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। दिस गिव अवे इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली। जी हाँ, तो ये गौर फरमाइएगा कि ये गिव अवे डाइन इन के लिए ही वैलिड है। फॉर ऑल द लिसनर्स, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे ऑन एनी अदर शो एट फन एशिया इन द लास्ट वन मंथ। जी हाँ, अगर आपने ये गिव अवे पिछले एक महीने में किसी दूसरे शो में जीता है तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू टू नॉट कॉल मी। हमको बाकी दूसरे लोगों को भी चांस देना है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट कॉलिंग मी इफ यू हैव ऑलरेडी वन दिस गिव अवे इन द लास्ट वन मंथ इन एनी अदर शो। यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ हियर। अगर आपका नाम देख लीजिए, अगर आपने पिछले मंथ में पिछले एक महीने के दौरान अगर आपने ये गिव अवे जीता है और फिर से आप मुझे कॉल करते हैं और ये गिव अवे जीत जाते हैं, अगर आप फिर से अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपको आपका गिव अवे नहीं देंगे क्योंकि उनके पास सारी डिटेल्स होती है। सो प्लीज़ मेक श्योर ऑफ दैट। हमको दूसरों को भी चांस देना है। सो अगर आपने ये एक महीने के पहले ये गिव अवे जीता है किसी अदर शो में, प्लीज़ डू नॉट कॉल मी। लेट्स गिव चांस टू ऑल अदर लिसनर्स। जिनको भी सही जवाब, जो भी मुझे सही जवाब देंगे वो फ्लेवर लाउंज की तरफ से जीत सकते हैं दाल मखनी या फिर धाबा स्टाइल चिकन करी। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और रेडी हो जाइए ये अगली धुन के लिए। और ये रही आपकी धुन। स्टूडियो का नंबर 9722355555।

0: मुझे एक कॉल आना शुरू हो चुका है दोस्तों, तो चलिए लेते हैं हमारे कॉलर को ऑन एयर. गुड इवनिंग फनेशिया रेडियो, यू लाइव ऑन एयर. हु इज दिस?
1: नेहा
0: नेहा, बताइए कौन सा गाना था.
1: ढोली तारो ढोल बाजी.
0: ढोली तारो ढोल बाजे. जी नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है. गुड इवनिंग फनेशिया रेडियो, यू लाइव ऑन एयर. हु इज दिस? ढोल. हेलो,
1: हेलो.
0: कौन बात कर रहा है? प्लीज आपका रेडियो वॉल्यूम कम कर दीजिए क्योंकि बहुत इको आ रहा है.
1: हेलो.
0: जी हाँ, बताइए आपका नाम.
1: रूपाली. इज
0: रूपाली, बताइए कौन सा गाना था.
1: इट काली तेरी छोटी है परांदा.
0: काली तेरी छोटी परांदा. जी नहीं, हाँ ये तो गाना नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल दोस्तों. आपको फिर से एक बार मैं फिर से एक बार, जी हाँ फिर से एक बार आपको धुन सुनवा देती हूँ. और एक सेकेंड, ओ माय गॉड, मुझे और कॉल आ रहे हैं, तो लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर को ऑन एयर. इनका कॉल तो हो गया है ड्रॉप. गुड इवनिंग फनेशिया रेडियो, यू लाइव ऑन एयर. हु इज दिस?
2: अनीता एंड चंद्रशेखर.
0: ओके
2: गाना
0: बताइए.
2: है माही वे.
0: माही वे,
2: माही वे का लास्ट पार्ट है ये.
0: कैन यू
2: हाँ,
0: सिंग
2: तुम कल
0: इट?
2: हो ना हो. माही वे लास्ट वे, माही वे तेरी
0: ऑल राइट सर,
2: तरफ.
0: एब्सोल्युटली राइट आंसर. प्लीज होल्ड ऑन, आई विल टेक यू ऑफ एयर एंड विल टेक ऑल ऑफ योर डिटेल्स. आप जीत चुके हैं फ्लेवर लाउंज की तरफ से ये गिव अवे. टिल देन ऑल द लिसनर्स, लिसन टू दिस सॉन्ग.
2: थैंक यू.

जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट, चंद्रशेखर जी ने जीत लिया है फ्लेवर लाउंज की तरफ से ये गिव अवे। एंड द म्यूजिक जो मैंने बजाया था वो माही वे का लास्ट पीस था, जहाँ पे सब लोग दांडिया खेलते हैं, गरबा खेलते हैं और अमेजिंग सा एक माहौल होता है। एब्सोल्युटली राइट चंद्रशेखर जी, एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दिस गिव अवे।

जी हाँ, कल होना हो मूवी से ये गाना सुन रहे थे आप, और इसी गाने का लास्ट पीस ऑफ म्यूजिक आप सभी को सुनवाया था, और उसी के ऊपर चंद्रशेखर जी ने जीत लिया है फ्लेवर लाउंज की तरफ से ये हमारा गिव अवे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर द लवली पार्टिसिपेशन। ये सिलसिला और एक घंटे तक चलने वाला है, यहाँ पे बहुत धमासान मज़ा आने वाला है और अच्छा अच्छा म्यूजिक बजने वाला है, सो प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़िएगा। 7:53 हो चुके हैं स्टूडियो की क्लॉक में, अगले गाने की तरफ लेकर चलती हूँ, उसके बाद और एक गाना, उसके बाद कुछ डिटेल्स, और उसके बाद आएगा एक छोटा सा ब्रेक।

0: मुझे सपने आने लगे। अनन्या मुझे राखी बांध रही। मैंने सोचा कि बात हाथ से निकल जाए इसके पहले जाके मैं संभाल लेता हूँ।
1: हमें साथ में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए।
2: हाँ? अचानक क्या हुआ?
1: It's not you, it's me.
2: ये it's not you, it's me क्या होता है? Please explain.
1: Relax. हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा है। बस हम साथ में पढ़ाई नहीं कर सकते।
2: क्रिश!

0: क्लास के बाद राम भाई चलो?
1: नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है।
2: दोनों का झगड़ा हुआ है क्या?
3: तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या?

दोस्तों एंड वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनेशिया नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉनस्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड आल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरवान। मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है और मोर फन भी है, ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फनेशिया नेटवर्क। और दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी इस रेले सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 वैसे रहता है आपका और मेरा साथ। आज एक बोनस 1 घंटा मिल गया है, तो 8 से 9 भी आप सभी को एंटरटेन करूंगी ओनली ऑन 104.9 एफएम पर। बहुत ही अच्छे अच्छे गाने सुने दोस्तों अभी तक हमने, अच्छे अच्छे गिवअवेज दिए आप सभी को। आपका बॉलीवुड का थोड़ा सा नॉलेज टेस्ट किया मैंने आपको धुन सुनवाकर और उसके बाद गाना पहचानने के लिए कहकर। तो अभी ना जो हमारा लास्ट 1 घंटा है वो हम फुल ऑन पार्टी मोड में चलते हैं, बिल्कुल ऐसे अपबीट हाई एनर्जी गाने सुनते हैं कि आपको एकदम मजा आ जाए, या फिर आपकी संडे की शाम जो आपने अभी अभी अगर एंजॉय करना शुरू किया है तो इट शुड स्टार्ट With the banger. ऐसे आप सभी को अपबीट गाने सुनवाऊंगी। अगर आपकी भी कोई रिकमेंडेशन है या फिर दिले ख्वाहिश है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। बट अगेन द सॉन्ग्स शुड बी वेरी हाई एनर्जी एंड अपबीट, क्योंकि ये अगला 1 घंटा आप सभी को बहुत ही अपबीट गाने सुनवाऊंगी ताकि आपको सुकून की नींद आए, क्योंकि आप थोड़ा सा वर्कआउट तो करेंगे, डांस वांस तो करेंगे ही ना भाई, तो आपको सुकून की नींद आए आगे जाकर और आपकी संडे की शाम बहुत ही अच्छी तरीके से गुजरे। तो चलिए दोस्तों विद दैट Without any further delay, आपको लेकर चलती हूँ ये वाले गाने की तरफ, क्योंकि ये गाना सुने बिना तो पार्टी शुरू हो ही नहीं सकती।

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है भाई। अगर इतना अच्छा गाना चल रहा है और अगर आप डांस नहीं कर रहे हो तो प्लीज आप जाके अपनी भैंस ही चरा सकते हो, क्योंकि वही अच्छा काम आप कर सकते हो। नेवरदलेस, जी हाँ, सुन रहे थे आप ये गाना दोस्तों, टेकन फ्रॉम द मूवी खूबसूरत। बहुत ही अतरंगी तरीके से नाच रही थी यहाँ पे सोनम कपूर। बट या, दिस वॉज अ गुड मूवी। जब बॉलीवुड के अपबीट या फिर हाई एनर्जी गानों की बात होती है ना दोस्तों, तो बॉलीवुड में जो ऐसे एक म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी है, उनके गाने तो अनकहे या फिर अनसुने तो हो ही नहीं सकते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विशाल और शेखर के बारे में। आपको बता देती हूँ दोस्तों दैट विशाल एंड शेखर आर लाइव आ रहे हैं यहाँ पर डैलस में। डैलस बॉलीवुड फैंस, योर प्ले लिस्ट इज अबाउट टू कम लाइव। विशाल एंड शेखर, द डुओ बिहाइंड सम ऑफ द बॉलीवुड biggest super hits, are bringing the super hit tour to Dallas on Sunday July 12th. जी हाँ, Sunday July 12th को होने वाला है इनका लाइव शो इन Dallas at the Curtis Culwell Center in Garland. Tickets are on sale now at kashpatelproductions.com. तो जल्दी से जल्दी जाइए और जल्दी से जल्दी टिकट्स लीजिए, क्योंकि ये शो अमेजिंग ब्लॉकबस्टर फुल ऑन एनर्जी वाला होने वाला है। तो भाई विशाल शेखर का नाम निकला है तो ये गाना तो बनता है।

0: जी हाँ, अप बीट और हाई एनर्जी गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ। अगर ऐसा कोई गाना आप सुनना चाहते हैं या फिर आपकी सुनने की इच्छा आकांक्षा मनोकामना है, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर।
1: उधर करो फिर चली गई यार, चली गई फिर, और चेक करके नहीं ला तू यार।

और बल्ले बल्ले जी हो गया है बिल्कुल ऐसे ही हाई बीट गाने, अब बीट गाने हाई एनर्जी वाले आपको सुनवा रही हूँ यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर। कोई गाने की इच्छा आकांक्षा सुनने की मनोकामना है जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए 9722355555 पर। बस गाना अब बीट या फिर हाई एनर्जी होना चाहिए।

अपबीट हाई एनर्जी गाना वही होता है दोस्तों, क्योंकि वो गाना चलने के बाद आपके पैर अपने आप थिरकने लगे। वेल जी हाँ, ऐसे ही गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ, चला रही हूँ आप सबके लिए, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। अगर आपके पसंद का अपबीट हाई एनर्जी गाना आपको सुनना है 9722355555 पे कॉल कीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए ताकि जल्दी से जल्दी मैं आपका गाना प्ले कर पाऊँ। वेल ये गाना, इस गाने की रिक्वेस्ट आई थी, तो चलिए सुनते।

व्हाट अ हाई एनर्जी अपबीट सॉन्ग मोनिका ओ माय डार्लिंग से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना। गाना ऐसा होना चाहिए कि पैर थिरकने लगे। जी हाँ, ऐसे ही अब भी हाई एनर्जी गाने सुनवा रही हूँ आपको। स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं 25 मिनट्स पास्ट 8। बस कुछ चंद आधे घंटे का सफर बचा है आपका और दोस्तों मेरा। अगले गाने की तरफ जाएंगे और उससे पहले बता दूं दैट फन एशिया इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे। जी हाँ, बिकॉज एवरी मोमेंट हैज अ सॉन्ग, एवरी मूड हैज अ मेलोडी, वेदर इट्स रोमांस और हार्ट ब्रेक, अ वेडिंग एंथम और अ पार्टी फेवरेट। वी वॉन्ट टू नो योर टॉपिक। सो फ्रॉम June 1st to June 15th यानी कि कल तक, टिल फिल आउट योर गूगल फॉर्म एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग्स अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज। फनीशा विल सिलेक्ट द मोस्ट लव्ड सॉन्ग्स फ्रॉम ईच जॉनर एंड द सॉन्ग्स दैट हैव बिकम द हार्ट बीट ऑफ मिलियंस। एंड ऑन June 21st को है वर्ल्ड म्यूजिक डे। हाँ जी हाँ, June 21st को वर्ल्ड म्यूजिक डे के अवसर पर एवरी फनीशिया शो विल बी डेडिकेटेड टू अ डिफरेंट म्यूजिक जॉनर featuring the winning selections. And here is the exciting part. The listeners whose song choices make it into our final playlist, the most will win exciting prizes. So visit funasia.net or follow our social media pages for details. Celebrate the magic of music with Funasia 104.9 FM.

0: दोस्तों बढ़ रही हुई एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मचाएगा स्टे ट्यून्ड टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो।
1: चिकन बनाना
2: ब्रो, बनाना नहीं बनाना, मतलब मेक द चिकन राइट।
3: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा ज़ाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओगी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया।
4: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स Even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897. और विजिट astrologerishwar.com।
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner।

मोर म्यूजिक मोर मैजिक और मोर मस्ती के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो की घड़ी में हो चुका है 32 मिनट्स पास्ट 8। बस कुछ चंद मिनट का सफर बचा है दोस्तों आपका और मेरा, तो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपको बहुत ही अपबीट और हाई एनर्जी गाने सुनवा रही हूँ, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले ऐसा अपबीट गाना सुनते हैं।

दोस्तों, हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विद यू? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स, बिकॉज ओनली ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम, बिकॉज एट पैशन हेल्थ केयर यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर ऑल द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज द सोल्यूशन. दिस इज नॉट ऑल, एंड पैशन हेल्थ इज ग्रोइंग. दे आर नाउ हायरिंग एक्सपीरियंस प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, endocrinologists, pediatricians and psychiatrists for full-time and part-time opportunities. So if you're passionate about patient care, send your resumes to passionhealthphysicians@gmail.com or text 217-4544-6 for more information. Visit passionhealthphysicians.com or call or text 214-666-6259. Passion Health Primary Care, your health is our passion.

दोस्तों करंट लग रहा है या नहीं, यही मेरी दिली ख्वाहिश थी कि आप सभी को करंट लगना चाहिए और ये करंट फील होके आपके पैर थिरकने चाहिए। तो चलिए और भी पैर थिरकाते हैं विद दिस अमेजिंग हार्ट थ्रॉब।

ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 8:50. यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का. बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का. दोस्तों, आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है. यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा, आकांक्षा और मनोकामना रहती है. With that, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी थॉट के साथ और करती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा. दिस इज योर होस्ट आरजे पूर्वा साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट. हैव अ ग्रेट नाइट अहेड डेलस एंड हैव अ ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द वीक अहेड. छोड़े जा रही हूँ आपको अगेन बैंगर सॉन्ग के तरफ. गुड नाइट दोस्तों, बाय बाय.

0: काफी हो।
1: मुझसे तो लड़ ले बेटा, दुनिया से कैसे लड़ोगे?
2: आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
3: 104.9 FM Fun Asia, Fun Asia, Fun Fun Fun Done.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
4: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध। आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory, business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer rent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
10: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
11: वेट, इतना सब और प्राइस?
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
12: मैं हीरो।
13: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
3: I love it.
2: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
4: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
6: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
7: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
7: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
6: सच में? सब संभालेंगे?
7: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
3: I love it.
2: The ultimate celebration of music and rhythm.

solution and let the good times roll.

0: पतंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा.
1: Hold up. Hey, woman, so be thinking we saw.
2: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM.
3: Yeah, it's coming up.
4: Let the music take control and dance the night away with Club Fanasia.
3: I love it.
4: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
1: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
2: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
1: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
3: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
0: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession. Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah. It's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
5: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

0: Club Fanasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.
2: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: Order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर jagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
2: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

ताली चलते प्यार सोनिए ताली चलते प्यार ऐसा नहीं चलते प्यार सोनिए ताली चलते प्यार।

0: de hoy.
1: सॉरी
0: हम ठीक हैं।

0: वहां से थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: Don't touch that dial. Keep listening.
1: Aha, what a big ball.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Fun Asia
4: Hi this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: पापा फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए?
1: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
2: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father needs is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
3: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
4: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग फन एशिया, फन एशिया।
1: मैं तेरी याद मुड़के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं।
2: दिल को चुक गई।

0: एंटरटेनमेंट से करते मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
5: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: Oh my God!
1: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तो मैं बता रही हूँ, पर क्यों? क्योंकि ये देखो #you #ouch #her और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रब हूँ।
0: उसे पुतली से पहले उसे बता के तो जा।
1: क्या

0: favorite music on your favorite radio.
1: क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद AG Fintax's एडवाइजरी सर्विसेज।

मगर बस आशिकों पे रहे।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: रुको जरा, सबर करो,
3: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून्ड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, टैलेंट में रेडियो का टैग, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
2: रुको जरा, सबर करो,
3: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
2: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lostintravel.com.
3: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
4: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
5: अरे कहना क्या चाहते हो?
6: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगू, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू। कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
7: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
7: कहाँ?
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
10: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब।
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
15: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.

0: Your hands, everybody.
1: Aaj Diwali bahano. It is 9 o'clock.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
5: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
6: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business के कुछ सिम्टम्स है. Profits है but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory, business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG FinTax's advisory services.
7: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
7: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट.
8: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
9: लिया.
8: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया.
8: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-772. That's 972-863-772.
10: Visit www.sanadainc.com today.
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
6: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ी, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
5: इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
14: मैं हीरोइन हूं.
15: An accident changed my life overnight. The pain made even simple things hard and taking care of my family felt impossible. I was stressed, scared and didn't know where to turn. Luckily, I found Omar Khwaja and team. They listened, treated me with respect and explained everything clearly. They stood by me every step of the way. If you have been injured in an accident, you don't have to face it alone. Call the law offices of Omar Khwaja today. Because of them, my family and I can finally move forward.
6: Call now to 833-GET-OMAR. The law offices of Omar Khwaja. Your rights, their responsibility. 833-GET-OMAR.

0: I'll have the world news coming up for you and also a giveaway all headed your way before we end this hour of the program. Right now, some messages from our sponsors.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
4: ओह हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with duck time.
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
7: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
5: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
13: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
12: कहाँ?
14: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, One vibe.
15: Breaking news. Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
16: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
17: Excuse me. It's called being loyal.
16: It's called being predictable.
17: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
16: And what's so special at Neon Cactus?
17: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
16: Not bad.
17: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
16: Okay, this I didn't expect from you.
17: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
16: Mamu, देखो क्या हो गया।
18: ओ क्या हो गया?
16: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
18: ओए जर्मन का कमाल है,
16: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
18: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 9726906623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
15: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
19: हाय, दिस इज शर्वरी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

0: All right, ladies and gentlemen, that's my show for today. If you all have any questions or need any help regarding the FunAsia Network, any of the five radio stations under the FunAsia Network, I will be happy to help you. My direct number I'll leave with you before I walk out of the studios and make way for Madhulika to come. My direct number is 214-675-1754. If any of you would like to advertise, any of you would like to join our team, please do give us a call. 214-675-1754. You can send me an email, shabnam@funasia.net. And that's my show for today. It is right now 10 o'clock.
1: This is the FunAsia Network. You are listening to FunAsia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by FunAsia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
5: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
6: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
5: के टू ड्राइव मतलब?
6: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
5: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
6: 100%
4: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
7: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
8: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
7: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
8: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
9: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia, get $100 off your first month.
10: Kehte hain Ayodhya mein ek rasoi thi, Sita ki rasoi. जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी, और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
11: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
10: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
12: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
13: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
14: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
15: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
14: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
16: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
17: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
18: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में सब संभालेंगे?
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
19: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका करती हूँ आप सभी का हार्दिक स्वागत। वेल, दूंगी आपका साथ दोपहर के 12:30 बजे तक। स्टूडियो का नंबर 9722355555। अ बिग शाउट आउट टू शबनम जी फॉर अ फैब फैब शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग। एंड यस, दिस इज मधुलिका, मैं दूंगी आपके साथ आपका साथ 12:30 बजे तक। आज हम सुनेंगे वो गाने बॉलीवुड के, हिंदी पॉप एल्बम्स के, कोक स्टूडियो के, जिन गानों में कुछ क्वांटिटी आती हो, जैसे कि थोड़ा, ज़्यादा, बहुत कुछ, तो इस तरह के गाने सुनेंगे। एंड अगर ऐसे कुछ गाने आपके मन में आ रहे हैं तो डेफिनेटली गिव मी अ कॉल। द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555। आई रिपीट, वी विल बी लिसनिंग टू द सॉन्ग्स इन जिनकी लिरिक्स में कुछ क्वांटिटी के वर्ड्स आते हों, जैसे कि थोड़ा, ज़रा, कुछ, ज़्यादा, बहुत। सो इसी तरह के गाने हम आज 12:30 बजे तक सुनेंगे।

Well, that was the title track, कुछ कुछ होता है. और जैसा कि मैंने कहा, आज हम 12:30 बजे तक सुनेंगे हिंदी पॉप एल्बम, कोक स्टूडियो या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स के वो गाने जिनकी लिरिक्स में कुछ क्वांटिटी वर्ड्स आते हों, जैसे थोड़ा, कुछ, ज़्यादा, बहुत, इस तरह के गाने, मतलब इस तरह के वर्ड्स उन लिरिक्स में होने चाहिए. एंड आपको बताऊं दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स. यू नो, तो अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल गाइडेंस चाहिए, टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट एजी फिनटेक्स एज दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US. बहुत सी सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. आप उन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं, दे आर वेरी एफिशिएंट एंड कैन गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 4699429888 और विजिट agfintax.com. दैट्स agfintax.com.

टेकन फ्रॉम द मूवी खट्टा मीठा, दैट वॉज थोड़ा है थोड़ी की जरूरत है। अच्छा, वर्ल्ड म्यूजिक डे आ रहा है राइट ऑन 21st of June, एंड फन एशिया हैज डिसाइडेड कि ये दिन वो आप सभी के साथ सेलिब्रेट करें। सो होता है ना कि हर गाने के साथ कोई यादें, कुछ खास बातें, कुछ मूड एसोसिएट होता है। खुश होते हैं तो कुछ अलग तरह के गाने याद आते हैं, प्यार में होते हैं तो कुछ और गाने याद आते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपको कौन से गाने पसंद हैं राइट। सो आप 15 जून यानी कि आज का दिन है आपके पास, जाकर गूगल फॉर्म भरें एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज, एंड देन फनेशिया विल सेलेक्ट द मोस्ट लव्ड सॉन्ग्स फ्रॉम ईच कैटेगरी। एंड फिर जून 21st को वर्ल्ड म्यूजिक डे वाले दिन हर एक फनेशिया शो जो है विल बी डेडिकेटेड टू अ डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरी फीचरिंग द विनिंग सिलेक्शंस। एंड यहाँ आता है आपका साथ। जी हाँ, द लिसनर्स हु सॉन्ग चॉइसेस मेक इट इनटू आवर फाइनल प्लेलिस्ट द मोस्ट विल विन एक्साइटिंग प्राइजेस। सो विजिट funasia.net और फॉलो आवर सोशल मीडिया पेजेस फॉर मोर डिटेल्स। सो सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ म्यूजिक विद funasia 104.9 FM।

0: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
1: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
3: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route, rerouting.
4: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
5: Location upgraded, now heading to India Bazaar Fort Worth.
4: क्यों?
5: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
4: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
9: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
10: हाँ.
9: घर रिलोकेट करनी है?
10: हाँ.
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
10: हाँ भाई हाँ.
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
11: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
12: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
13: जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल Fun Asia 104.9 FM.

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Madhulika. I'll be with you till 12:30 PM. Covering in for Me Too today. And yes, studio number rakhe yaad 972-235-5555. Sun rahe hain aaj hum wo gaane jin gaano ki lyrics mein koi quantity word aata ho. Jaise thoda, bahut, kuch, zyada, हल्का, यू नो, भारी, इस टाइप के कोई वर्ड्स अगर उन लिरिक्स में हैं, देन गिव मी अ कॉल 972-235-5555. आई विल मेक श्योर दैट आई प्ले योर सॉन्ग रिक्वेस्ट.

0: in the mid 500, low 500s, and we were able to successfully improve the credit score, increase the credit score. And sometimes it took us 2 months, sometimes it took us 6 months. I had a client in Houston, it took us almost a year and a half to get his income and credit in line, and then he was able to buy his home. We had a client in Massachusetts, where in the credit score in the mid 500s, within probably 90 or 120 days, we were able to get it to mid 600s, wow. And then he was able to buy a house. So, you know, और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत से लोग को ये कि हमारी क्रेडिट खराब है, हमने बैंकरप्सी फाइल किया था, हमने फोरक्लोजर, हमारे पे फोरक्लोजर है, हम 4 साल हो गए, लेकिन 5 साल हो गए, लेकिन अब जब हम घर बाय करने जाएंगे तो हमारा रेट विल बी मच हायर, इवन दो वी हैव अ डिसेंट क्रेडिट स्कोर. ऐसा नहीं है. समटाइम्स पीपल आस्क मी, हुसैन, आई फाइल बैंकरप्सी, डू आई हैव टू पुट 20% डाउन, विल आई गेट अ हायर क्रेडिट, हायर इंटरेस्ट रेट? नॉट बिकॉज ऑफ बैंकरप्सी यू विल गेट अ हायर इंटरेस्ट रेट, but once you have you know, waited out the waiting period, 2 saal 4 saal depending on FHA or conventional loan, you can get a same rate where someone who has no bank, who has no bankruptcy, has 780 score, you have 780 score, you are putting 5% down, they are putting 15% down, but you will almost get an identical interest rate. So don't give up hopes, don't think ki hum ghar buy nahi kar sakte kyunki hamari previously history kharab thi. कभी कभी मेडिकल रीजन होता है, कभी कभी डिवोर्स होता है, कभी कभी हम जब स्टूडेंट्स होते हैं वो मस्ती होती है, तो होता है वो. बट इन दिस कंट्री यू हैव अ सेकंड चांस एंड थर्ड चांस.
1: ऑसम, दिस इज रियली इंफॉर्मेटिव. अच्छा, अगर किसी को अपना घर रीफाइनेंस कराना है, यू नो, टू पे ऑफ डेट, तो उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? लाइक व्हाट स्टेप्स डू दे नीड टू टेक इफ दे वांट टू रीफाइनेंस देयर हाउस टू पे ऑफ डेट?
0: आजकल हमारे, आई वुड से, 25-30% एप्लीकेशन कैश आउट के लिए ही आते हैं.
1: अच्छा.
0: और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू हेल्प देम. मैं ये सैटरडे के रेडियो पे भी काफी कवर किया था. दे कम टू अस व्हेन इट्स टू लेट, मीनिंग वो ऑलरेडी बिहाइंड ऑन देयर पेमेंट्स हो जाते हैं और फिर वो हमारे पास आते हैं. एंड आई टेल देम, आई विश यू वुड हैव कम टू मी 60 or 90 days बिफोर. वो हम ट्राई कर रहे थे, हमें लग रहा था हो जाएगा, हमें लग रहा था हो जाएगा, अभी सर के ऊपर पानी चला गया है या वॉट एवर, एंड देन वी कैन नॉट हेल्प देम. सो इफ यू आर इन दैट सिचुएशन, यू नीड कैश आउट, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट. अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स करने को स्ट्रगल कर रहे हो, आपका बिजनेस स्लो है, फॉर वॉट एवर रीजन यू नीड मनी, इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और आपका टैक्स रिटर्न जस्टिफाई नहीं कर रहा है लेकिन आपको कैश आउट की जरूरत है, वी हैव प्रोग्राम्स जहां हम आपके टैक्स रिटर्न को बिल्कुल डिसरिगार्ड करते हैं. एज लॉन्ग एज यू हैव अ डिसेंट क्रेडिट स्कोर, वी कैन स्टिल गेट यू कैश आउट एंड डिसरिगार्ड योर बैंक्स टैक्स रिटर्न इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड. सो अगर आपको वो दिक्कत हो रही है, कौन सी पेमेंट्स करना है, कौन सी पेमेंट्स नहीं करना है, यू आर स्ट्रगलिंग बिटवीन विच पेमेंट्स टू मेक, विच पेमेंट्स नॉट टू मेक, एंड यू हैव गुड अमाउंट ऑफ इक्विटी इन योर हाउस, डेफिनेटली डेफिनेटली थिंक अबाउट कैश आउट.
1: Wonderful. So, you know, last two things. First of all, I would want you to share the point of contact for the listeners, for the public. And secondly, any closing statement, you know, any closing advice that you want to give?
0: Just like you said, cash out ke liye, do not wait. Agar aapko paise ki zarurat hai, if you are struggling, do call us. The consultation is absolutely free. The phone call is absolutely free. If you are looking for commercial loans, at Dream Home, we can help you to acquire a land, to do construct shopping complexes, office condos, refinance office condos, get cash out on land. So at Dream Home, anything to do with land, real estate, we can definitely help you to get financing done.
1: And then the point of contact, how do listeners contact 972-245-5626,
0: 972-245-5626, or info@dreamhomemortgage.com. Listeners, I'm running out of time, but if you're a first-time home buyer, you're trying to buy a primary residence, aapko lagta hai ki income, household income 70-75,000 se kam hai, and you're planning to buy a house, we have this grant that will be available 1st of July. So if you are looking for the grant up to $25,000, do call us. Again, its consultation is absolutely free. Application is absolutely free for this grant. So, but it is only to buy your primary residence and you have to be a first-time home buyer.
1: Awesome. Well, thank you so much for all the information that you shared. It was really informative, and thank you so much for your time, sir.
0: Thank you. Thank you. Always a pleasure.
1: Thank you. Bye-bye.
2: The Dill of Dallas. Heart to heart.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com.
4: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
6: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
7: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
8: क्या?
7: सैलरी बंद हो जाती है.
8: और बिल्स बंद नहीं होते.
7: एग्जैक्टली. इसलिए स्मार्ट लोग वेल टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं.
8: मतलब
7: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
6: द वेल्थ टैक्टिक, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
9: पापा, फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए?
10: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है.
11: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है. ऑल दैट योर फादर नीड इज गुड फूड, ग्रेट कंपनी एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स. दिस फादर्स डे वीकेंड फ्रॉम June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
13: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM.

वेल दैट वॉज जाने तू या जाने ना. एंड होता है ना कि आपको लगता है आपको सब पता है, लेकिन हो सकता है आपको ना पता हो लेसिक के बारे में. जी हाँ, सो इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सेइंग गुड बाय टू ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो आपको शायद ना पता हो लेसिक के बारे में, एज दैट्स जस्ट वन ऑफ सेवरल विजन करेक्शन ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू टुडे. डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला, अ फेलोशिप ट्रेन्ड आई सर्जन एंड फाउंडर ऑफ विजनरी आई इन प्लेनो, इनकी अप्रोच जो है बड़ी सिंपल सी है, दैट एजुकेट फर्स्ट बिकॉज यू शुड नो व्हाट ऑल ऑप्शंस यू हैव सो दैट यू कैन मेक द बेस्ट डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर आईज विद कॉन्फिडेंस. सो टू लर्न मोर अबाउट ऑप्शंस एंड सी इफ यू आर अ कैंडिडेट, आप उन्हें कॉल करें. द नंबर इज 214-972-2020 और विजिट lasikplano.com. एंड डू नॉट फॉरगेट, जी हाँ, रिमेंबर टू मैंशन फन एशिया 2020 टू रिसीव अ फ्री कंसल्टेशन. सो विजनरी आई केयर रखें याद. द नंबर वंस अगेन इज 214-972-2020.

0: ऑलराइट, वेल दिस इज मधुलिका, मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12:30 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555। आज हम सुन रहे हैं बॉलीवुड हिंदी पॉप एल्बम कोक स्टूडियो के वो गाने जिन गानों की लिरिक्स में कहीं कुछ क्वांटिटी मेंशन हो, यानी थोड़ी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हल्का भारी, अगर इस तरह के वर्ड्स हैं तो हम वो गाने सुनेंगे। सो द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555। अच्छा, आपको बताऊँ मैं कि अगर कभी गलती से आप कोई कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट, किसी और की गलती थी या कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा को आप रखें याद, क्योंकि ना केवल ही आपका केस लड़ेंगे, आपको कॉम्पनसेशन भी दिलवाएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज का जो स्ट्रेस है वो भी वही झेलेंगे, एंड यू डू नॉट पे अनटिल यू विन। आप जब तक जीतेंगे नहीं, यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग। सो एक फ्री कंसल्टेशन के लिए आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 4693005046, और यू कैन विजिट attorneyomar.com, दैट्स attorneyomar.com.
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat. Yeah, I'll have this. Check this out now. Come on. Refresh.

Well, that was a halka sa taken from the movie Chocolate. And well, the next one, it's taken from the movie Bunty और बबली. लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊं दैट यू नो अ मोमेंट इज एन एग्जैक्ट यूनिट ऑफ टाइम. जैसे कि एन आवर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पॉइंट्स, 10 मिनट्स और 40 मोमेंट्स. दिस मीन्स अ लिटरल मिनिमल मोमेंट लास्ट एग्जैक्टली 90 सेकेंड्स. ऐसा ही है कि भाई यू नो मेट्रिक प्रीफिक्सेस रन फ्रॉम जायंट टू सब एटॉमिक. अब वेल ये कुछ ज़्यादा ही ज्ञान की बात हो जाएगी. सो हाउ अबाउट वी जस्ट प्ले द सॉन्ग विच इज़ टेकन फ्रॉम बंटी और बबली. वी आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स जिनमें की क्वांटिटी मेजरमेंट्स के वर्ड्स लिरिक्स में हों, जैसे थोड़ा, हल्का, भारी, बहुत, कम. वेल इसी तरह के गाने सुनेंगे हम दोपहर के 12:30 बजे तक. दिस इज़ मधुलिका कवरिंग इन फॉर मी टू टुडे.

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is Madhulika. I'm covering in for Me Too. दूंगी आपका साथ दोपहर के 12:30 बजे तक. स्टूडियो का नंबर 9722355555. सुनेंगे आज हम 12:30 तक वो गाने जिन गानों की लिरिक्स में कुछ क्वांटिटी के वर्ड्स आते हों, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, यू नो, हल्का, भारी. सो अगर ऐसे कुछ गाने हैं आपके मन में और सुनने का मन है, ज़रूर गिव मी अ कॉल. द नंबर वंस अगेन इज़ 9722355555.

0: आज से पहले।
1: वेल खुशी ना मिलती है अगर कुछ ज्वेलरी वगैरह भी खरीदो तो भी खुशी मिलती है, राइट? सो वेल दैट इज द वेट इज ओवर। जी हाँ, PMJ Jewels इज नाउ कमिंग टू फ्रिस्को, ब्रिंगिंग ओवर 60 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सेलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। जी हाँ, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं स्टनिंग गोल्ड, चाहे तो डायमंड या फिर ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन, राइट? सो जॉइन द ग्रैंड ओपनिंग, दिस इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग June 20th, एंड यू कैन एंजॉय एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक्साइटिंग फेस्टिविटीज एंड चांसेस टू विन ब्यूटिफुल ज्वेलरी पीसेस। Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghattamanani, PMJ is a name trusted by generations. So, aap visit kare PMJ Jewels Frisco on Main Street and discover jewelry that tells your story.

मैं अगला गाना प्ले करूं उसके पहले मैं भी बस एक ही बात बताना चाहती हूं, दैट इफ यू आर लुकिंग टू बाय सेल और रिलोकेट इन द DFW एरिया, देन यू नीड टू लेट नवनीता खेमका विद केलर विलियम्स रियल्टी गाइड यू एवरी स्टेप ऑफ द वे विद पर्सनलाइज सर्विस, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड जेन्युइन केयर. Because every home has a story, right? And so let her help you create yours. Call Navneeta Khemka today. The number is 347-449-4242. That's Navneeta Khemka for you all.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
2: Zindagi ek safar hai suhana. यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
4: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
6: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
7: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
9: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
9: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, दूंगी आपका साथ एक घंटे और. जी हाँ, I am with you till 12:30. Covering in for me too, studio number 972-235-5555. You're listening to songs जिनकी lyrics में कोई quantity के words आते हों, जैसे कि कम, ज़्यादा, you know, बहुत, थोड़ा. सो अगर ऐसे कुछ गाने आ रहे हैं आपको याद, तो ज़रूर give me a call. The number is 972-235-5555.

0: All right, that was कुछ तो हुआ है taken from the movie कल हो ना हो. एंड मैंने पूछा था आपसे एक सवाल कि मैं एक गाने का ट्रांसलेशन दे रही हूँ एंड यू हैव टू गेस विच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड द ट्रांसलेशन वॉज समथिंग लाइक दिस दैट बुक्स यू मस्ट हैव रेड सेवरल. हैव यू एवर रेड अ फेस? एंड वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: Hello.
0: हाउ आर यू?
1: I'm good.
0: All right. So tell me, what's your name?
1: My name is Siddharth.
0: All right, Siddharth, तो बताइए कौन से गाने की बात हो रही है?
1: This is किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने फ्रॉम बाजीगर.
0: क्या बात है, पढ़ी है आपने किताबें बड़ी सारी?
1: मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं.
0: चेहरा भी पढ़ा है कोई?
1: चेहरा पढ़ते पढ़ते रह गया.
0: चलिए कोई नहीं, अभी भी मौका है, पढ़े पढ़े. वेल कांग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही जवाब जीत लिया आपने नियॉन कैक्टस का ये गिव अवे. आई एम गोना
1: थैंक यू.
0: प्ले दिस सॉन्ग फॉर आवर लिसनर्स एंड आई विल टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच फॉर
1: परफेक्ट. थैंक यू.
0: पार्टिसिपेटिंग.
1: थैंक यू.
0: थैंक यू.

Well, that was taken from the movie बाजीगर. किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने. अच्छा होता है कि भाई जब आप डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चाहें तो कभी कभी लगता है कि यार पूरी बात ही नहीं सुनी इन्होंने और टाइम भी नहीं दिया, यू नो 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट. वेल, आपको मैं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बताऊंगी जहां एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. अच्छा बिकॉज यू नो पैशन हेल्थ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. एंड साथ ही साथ आपको बताऊँ दैट सिंस पैशन हेल्थ इज़ ग्रोइंग दे आर हायरिंग एक्सपीरियंस्ड प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस एंड साइकैट्रिस्ट फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज. तो अगर आप पैशनेट हैं अबाउट पेशेंट केयर देन डू सेंड योर रेज्यूमे टू पैशन हेल्थ फिजिशियंस एट gmail.com और यू कैन टेक्स्ट देम 217-454-4639 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. यू नो यू कैन विजिट पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम और कॉल 214-666-6259. एंड द नेक्स्ट वन, वेल दैट्स द टाइटल ट्रैक चीनी कम.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond, and bridal collections designed for every celebration, milestone, and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations, and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition craft. Style defined.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
13: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
14: अरे यार, डालस में पंजाब?
15: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहाँ बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म।
16: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
17: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
18: लिया।
17: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
18: नहीं आया।
17: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
16: Visit www.sanadainc.com today.
19: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
20: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
19: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
20: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
21: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी।
18: वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
21: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
19: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ी, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
22: ना सब और प्राइस
19: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
23: मैं हीरो इन हूं।
15: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
19: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
24: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.
25: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, वैसे तो लेकर आती हूँ जस्ट चिल एवरी सैटरडे एंड संडे होता है मेरा और आपका साथ सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, लेकिन टुडे आई एम कवरिंग फॉर मीठू. आई बी देयर विद यू टिल 12:30. स्टूडियो का नंबर 972-235-5555. सुन रहे हैं आज हम वो गाने जिन गानों में कोई क्वांटिटी वर्ड्स लिरिक्स में हो, जैसे थोड़ा, कम, ज़्यादा, बहुत, सुबह ऐसे ही कुछ गाने अगर आपके मन में आ रहे हों तो डेफिनेटली गिव मी अ कॉल 972-235-5555.

बात तो सही है भाई, कब तक चुप बैठेंगे, कुछ तो है बोलना। और जब बोलना ही है तो मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेटिव बात क्यों ना बोली जाए, राइट। सो अगर आप एक प्लान कर रहे हैं, यू नो योर पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, और आप H1B, F1, L1 या कोई भी और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पर हैं, देन द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प यू। जी हाँ, अटर्नी सीमा मेहता और उनकी जो एक्सपीरियंस टीम है स्पेशलाइजेज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉ। फिर चाहे वो EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा हो, फैमिली या एन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो, या US सिटीजनशिप। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम, ईमेल info@seemamehtalawfirm.com। दैट्स info@seemamehtalawfirm.com।

टेकन फ्रॉम द मूवी बीवी नंबर वन. वेल कमाल हो गया. वैसे मैंने ना ऐसे ही सोचा था कि चलो आज वो गाने सुनते हैं जिनमें कि कोई क्वांटिटी की यू नो लिरिक्स हो, जैसे कि थोड़ा कम ज़्यादा कुछ. एंड गाने जो हैं वो निकलते ही जा रहे हैं, कॉल्स आती ही जा रही हैं. सो वेल द नेक्स्ट वन इज़ टेकन फ्रॉम द मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ. एंड इसमें वो मखना सॉन्ग की रिक्वेस्ट आई है. एंड इसमें भी वो क्वांटिटी का वर्ड आता है, ज़रा ज़रा मखना, राइट? मेरे प्यार का रस ज़रा चखना, ज़रा ओए मखना. एंड उसमें भी कुछ कुछ ये वर्ड्स हैं. तो इंटरेस्टिंग बात ये है दैट ये मखना जो है इज़ समटाइम्स लिंक्ड द आइडिया ऑफ यू नो, जैसे गानों में यूज़ करते हैं जब, तो इट्स यूजुअली कन्वेइंग फॉन्डनेस, एडमरेशन और फ्लर्टेशन. सो वेल लेट्स लिसन टू दिस फन नंबर फ्रॉम बड़े मियाँ छोटे मियाँ.

0: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
1: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
0: Renew?
1: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
0: What better way to celebrate than with something timeless?
1: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory, business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ.
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ.
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ.
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
10: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
9: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
10: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
2: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स. पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज. ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस. किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
11: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
12: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: Hi, this is Vinay Pathak and you are listening to me on Fun Asia Radio.

अ वेरी गुड आफ्टरनून डैलस, आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे सिमी। आज है मंडे और मंडे अक्सर है ना थका दे, मतलब ऑलरेडी लग रहा है कि बस क्यों आ गया यार मंडे, मंडे ब्लूज होने शुरू हो गए हैं। और मंडे का नाम सुनते ही कुछ लोगों को ऑफिस या क्लासेस याद आती हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि काश काश वीकेंड थोड़ा और लंबा हो जाता। लेकिन आज हम मंडे को बोरिंग नहीं बल्कि मनपसंद मंडे में तब्दील कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। आज का सवाल है कि अगर मंडे आपके हिसाब से डिजाइन किया जाता तो आपका मनपसंद मंडे कैसा होता, क्या आइडिया है मनपसंद मंडे का? लेट उठना, वर्क फ्रॉम होम, फेवरेट ब्रेकफास्ट या मील, या फिर मंडे को ऑफिशियली हॉलीडे डिक्लेयर कर दे, क्या क्या बोलते हैं? कॉल कीजिए 9722355555 पे।

हम भी तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए कि हम मंडे के आने पे ऐसा बोले वाओ वाओ मंडे आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं मंडे की मॉर्निंग की। आपका जो आइडियल मंडे ब्रेकफास्ट है वो क्या होता है? चाय और पार्ले जी, आलू पराठा, पैनकेक्स या ऑमलेट? और अगर मंडे को एक कोई रूल चेंज कर सकते हैं आप, तो फिर क्या चेंज करना चाहते हैं? मेरा रूल होता कि मंडे को सुबह 10 बजे से पहले कोई मीटिंग नहीं, कोई क्लासेस नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। व्हाट आर योर थॉट्स एंड व्हाट आर योर रूल्स जो कि आप मंडे के बारे में चेंज करना चाहते हैं? कॉल करके हमें बता सकते हैं 972-235-5555 पे।

आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम मंडे को जो है मनपसंद मंडे में बदल सकते हैं। बहुत सारे कॉलर्स का फोन आया और अभी अभी अली जी का भी फोन आया। उन्होंने बताया कि अगर ब्रेकफास्ट में निहारी का शोरबा मिल जाए तो फिर बोल सकते हैं कि मंडे अच्छा जा रहा है या मंडे की शुरुआत अच्छी हुई है। ये तो काफी अच्छी बात है और आप लोग भी मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि आपके मंडे को मनपसंद कैसे बनाए। वैसे हर किसी का कोई ना कोई मेमोरेबल मंडे जरूर होता है। यूजुअली क्या होता है, स्कूल का पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन या जॉब का पहला दिन अक्सर ही मंडे को शुरू होता है तो वो याद रह जाता है। या फिर यूएस में पहला वर्किंग मंडे, या यूएस में जब पहली बार आए, या फिर कोई भी ऐसा मंडे जो लाइफ ही बदल गया, शादी हुई, बर्थडे हुआ, कुछ भी। ऐसा कौन सा मंडे आपको याद है? सो आपको मुझे कॉल करके बताना है और तब तक ये गाना एंजॉय करते रहना है। बहुत ही प्यारा सा गाना है एंड बहुत अमेजिंग इसके लिरिक्स भी है।

0: आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार मिलेंगे बहुत सारे अनाउंसमेंट्स के साथ और बहुत सारे गिव अवेज के साथ।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम, केजीएमपी 104.9 एफएम HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 एफएम HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन। ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
6: अरे कहना क्या चाहते हो?
7: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर डॉट कॉम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
8: माई टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल इस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे। टॉक टू सुधीर पाई अबाउट 2025 डिजिटल एसेट और क्रिप्टो फंड।
9: इन्फॉर्मेशन शेयर्ड हियर इज फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली एंड डज नॉट कंस्टिट्यूट फाइनेंशियल और टैक्स एडवाइस। इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। ईमेल wealth@mytimeequity.com फॉर प्रोफेशनल एडवाइस।
4: आर यू टायर्ड ऑफ द सेम आर्ग्यूमेंट्स, रिएक्शंस एंड इमोशनल स्ट्रगल्स? मे बी इट्स टाइम टू चेंज द पैटर्न। आरती वेदुला, अ सर्टिफाइड एंड अक्रेडिटेड कोच, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
10: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
4: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
11: Calculating route, rerouting.
4: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
11: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
4: क्यों?
11: क्योंकि फोर्ट वर्थ, केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
4: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
12: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
11: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
10: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. कॉल 214-432-2499 और ईमेल एट info@seemamehtalawfirm.com.
13: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूं आपकी होस्ट आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं आफ्टरनून अड्डा। अभी वक्त हो चुका है 1:10 और इसके साथ हमने जो आज का टॉपिक है, जो थीम था मनपसंद मंडे, उसको अभी क्लोज करते हैं। और आज हमने ये सीखा कि हमें कोई ना कोई छोटी छोटी चीजें जरूर करनी चाहिए ताकि हम अपने मंडे ब्लूज को मनपसंद मंडे में कन्वर्ट कर सके, बदल सके। अब वक्त हो गया है कि मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखूं। जी हाँ, गिव अवे सेगमेंट शुरू हो चुका है, ऑल सेट, रेडी हो जाइए। मैं बस क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और इसके जो भी सही जवाब देगा उसको मिलेगा फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड, तो वो लकी विनर आप भी हो सकते हैं। सवाल ये है कि वो क्या है जो सामने तो होता है पर दिखाई नहीं देता, वो क्या है जो सामने होता है पर दिखाई नहीं देता, रिडल है जी। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कॉल कीजिए 9722355555 पे।

इसके साथ हमारा गिव अवे राउंड खत्म होता है. थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने भी कॉल किया. आज का जो सवाल था वो ये था कि वो क्या है जो सामने तो होता है पर दिखाई नहीं देता. और सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया है सुल्तान नूरानी जी ने कि आने वाला वक्त यानी कि फ्यूचर सामने तो होता है पर दिखाई नहीं देता. और बहुत सारे लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स दिए. किसी ने हवा कहा, किसी ने भगवान खुदा कहा, सब सही है. आज के हमारे विनर है सुल्तान नूरानी जी. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. फन पिज्जा किचन में ना हर एक स्लाइस आपका इंतजार कर रहा है. यहाँ आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मोर चीज, लेस चीज, मोर स्पाइसी, लेस स्पाइसी, सारे ही कॉम्बिनेशन, सारे ही वैरायटी अवेलेबल है जो एक पिज्जा में हो सकते हैं. अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए अचारी पनीर पिज्जा पैक्ड विथ टैंगी अचार पंच एंड सॉफ्ट मेल्टिंग पनीर. और अगर आप मीट लवर है, अगर आपको नॉन वेज पसंद है, तो तंदूरी चिकन पिज्जा इज प्योर स्मोकी परफेक्शन straight from the tandoor to your taste buds. तो जरूर जाइए. और अगर आपको कोई details चाहिए उनकी opening closing hours या menu के बारे में जानना है तो आप उनके website पे reach out कर सकते हैं which is funpizzakitchen.com. enjoy the next song. चाशनी में डूब जाइए.

डैलस अब इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि पीएमजी ज्वेलर्स आ चुके हैं फ्रिस्को में और विथ देयर 60 इयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सीलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप. यहां आपको मिलेगा स्टनिंग गोल्ड, डायमंड, ब्राइडल कलेक्शन, रेगुलर कलेक्शन हर एक सेलिब्रेशन और माइलस्टोन के लिए. इनका ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा है जून 20th को, जहां आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव ऑफर्स, एक्साइटिंग फेस्टिविटीज और चांस है कि आप एक ब्यूटीफुल ज्वेलरी पीस जीत सकते हैं. मुझे तो पीएमजी ज्वेलर्स का सुनते ही ना उनके जो ब्रांड एम्बेसडर्स है महेश बाबू एंड सितारा उनकी बेटी बिल्कुल ऐसे पिक्चर सा आ जाता है विथ स्टनिंग गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज दैट दे वेयर. सो आपको इंतजार किस बात का है, जाइए एक्सप्लोर तो कीजिए पीएमजी ज्वेल्स को विच इज लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट फ्रिस्को. ऑल द बेस्ट.

0: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
3: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
4: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
3: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
0: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
9: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
0: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
0: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
12: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

0: मुझे भी ब्रेक पे अपने लिसनर्स की बहुत याद आती है, तो मैं फटाफट आ जाती हूँ। मैं हूँ आरजे सिम्मी और आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, अमन फ्रॉम उरा डेट रिलीफ सेगमेंट। वेरी वार्म वेलकम टू यू अमन, वेलकम टू द शो। एंड हम आपसे जानना चाहेंगे उरा के बारे में, योर डेट रिलीफ प्रोग्राम्स के बारे में। ओवर टू यू।
1: जी हाँ, थैंक यू। फन एशिया सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार। 15 तारीख है, यानी कि मिड ऑफ द वीक, मिड ऑफ द मंथ है रातर। तो देखिए, करते करते ये महीने के मिड में पहुंच गए, जून का महीना और 15 तारीख। साल का भी मिड है और महीने का भी मिड है। तो लेकिन एक गलती जो हमने पिछले साल भी की या पिछले महीने भी की या इस महीने भी करने वाले हैं या कर चुके हैं, कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं। अच्छी बात है, क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट देनी चाहिए, पर लेकिन अगर वो उतर रही हो तो जरूर ठीक, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 40% इंटरेस्ट के साथ मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं, तो वो आप ये देख लीजिए कि वो अगले 30 साल तक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट उतरेगी नहीं। आप अपना मनी भी वेस्ट कर रहे हैं, अपना क्रेडिट स्कोर भी खराब कर रहे हैं, और आपको घर का और गाड़ी का लोन लेने में भी दिक्कत आएगी, बिकॉज आपकी डेट टू इनकम रेशियो इंप्रूव नहीं कर रही, आपका कर्जा नहीं उतर रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतरे, कार्ड कोई भी हो सकते हैं, पर्सनल हो, बिजनेस के हों, स्टोर के हों, इन सारे कार्ड्स के कर्जे का आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवाया जा सकता है, अप टू 50 to 60-65% समटाइम। लेकिन अगर आप वो कर्जा माफ करवाना चाहते हैं, या फिर आपका कोई पर्सनल लोन जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, उसका कोई कर्जा माफ करवाना चाहते हैं, या गाड़ी जो है वो रिपोजेस हो गई, जिसको कहते हैं ना रिपो होगी, गाड़ी अगर रिपोजेस हो चुकी है, बैंक गाड़ी ले जा चुका है, उसको अगर नेगोशिएट करके आधा माफ करवाना चाहते हैं, या गाड़ी टोटल हो गई, एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी का लोन इंश्योरेंस ने 70% दिया या 50% दिया, जो बाकी बचा वो आपको देना है, उसको भी नेगोशिएट कर सकते हैं, उसको भी आधे से ज्यादा माफ करवा सकते हैं। तो आप कोई भी लोन है आपके सर पर, उसको डिस्कस कीजिए, ताकि हम बता सकें कि आप किस तरह से इसको से छुटकारा पा सकते हैं और किस तरह से ये कर्जा माफ करवाया जा सकता है। जस्ट गिव अस अ कॉल, हमारा टोल फ्री नंबर बड़ा इजी है, 6 बार तो 8 ही है, यानी कि 888-888-9914। नड़िन में 14 याद रखो, बाकी सारे 8 है, 1-888-888-9914। या फिर अपने दोस्त अमन यानी मेरे से बात कर सकते हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, किसी भी लैंग्वेज में बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मेरा डायरेक्ट नंबर लीजिए 9167637 6355 9167637 6355। एक बार फिर से 9167763555। और हमारी वेबसाइट है www.ura.org। फ्री एनालाइज के लिए आज ही कॉल कीजिए और मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिए, ताकि आपका आधा कर्जा उड़न छू। लेकिन अगर आप नंबर ना भी लिख पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइनेंशिया कॉल कीजिए, अच्छे से खाने की फरमाइश कीजिए, साथ में गाना सुनिए, साथ में पैसा बचाइए।
0: थैंक यू सो मच अमन, आई होप दिस वॉज बी हेल्पफुल फॉर आर लिसनर्स एंड विल कनेक्ट विथ यू नेक्स्ट टाइम।
1: थैंक यू, रियली अप्रिशिएट।
0: और जैसा कि अमन ने भी कहा कि अच्छे अच्छे गाने के लिए आपको फन एशिया पे ही बने रहना है।

क्या आपको पता है कि आपका जो ड्रीम होम है, सपनों का घर, वो अब सपनों से आगे बढ़कर रियलिटी में बदल सकता है विद द हेल्प ऑफ ड्रीम होम मॉर्टगेज। सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्टगेज और उनकी टीम, दे हैव बीन हेल्पिंग फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री अपने होम ओनरशिप को रियलिटी में बदलने में बाय गिविंग देम पर्सनलाइज्ड मॉर्टगेज सॉल्यूशन। और इनका जो प्रोसेस होता है ना, काफ़ी स्मूथ होता है, स्ट्रेस फ्री होता है। और तो और इनके पास यूएस के सारे स्टेट्स यानी 50 स्टेट्स में लाइसेंस है। और इनकी एक्सपीरियंस टीम कमिटेड है कि आपको एक राइट होम लोन ऑप्शन ढूंढ के दें जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से टेलर किया गया हो। अगर आपको इनसे बातें करनी है या फिर कोई कंसल्टेशन लेना है या कोई और डिटेल्स, तो आप कॉल कर सकते हैं एट 972-245-5626 या फिर आप विजिट कीजिए dreamhomemortgage.com और शुरू कर दीजिए अपने होम ओनरशिप जर्नी को कॉन्फिडेंस में के साथ तब्दील करने के लिए रियलिटी में।

वर्ल्ड म्यूजिक डे आ रहा है जून 21 को, सिर्फ एक हफ्ते रह गए हैं, उससे भी कम टाइम रह गया यार, और इसमें फन एशिया पीछे रह जाए ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम तो सबसे आगे खड़े हैं भाई, हम तैयार कर रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट बेस्ड ऑन योर चॉइसेस, यानी लिसनर्स के चॉइसेस के बेसिस पे। आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और या तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं फन एशिया पे, और आपको एक गूगल फॉर्म भरना है, अपने फेवरेट सॉन्ग को नॉमिनेट करना है। बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी आपको, आपको अपना फेवरेट कैटेगरी में फेवरेट सॉन्ग नॉमिनेट करना है, और अगर आपके सॉन्ग को जगह मिली इन दी फाइनल प्लेलिस्ट ऑन जून 21 ऑन द वर्ल्ड म्यूजिक डे, तो आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। तो प्लीज प्लीज प्लीज अपने फेवरेट सॉन्ग को जरूर नॉमिनेट करें। ओके,

टेक्सास प्राइमरी केयर जो कि 13 सालों से अपनी कम्युनिटी की केयर करते आ रहे हैं विद देयर मेडिकल सर्विसेज, अब लेके आ रहे हैं फ्रिस्को में अपना एक और सेकेंड लोकेशन। जी हाँ, विद अ ब्रांड न्यू नेम नोन एज लनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। लनॉक्सी मेडिकल लेके आया है आपके लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स और तो और हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी, सब कुछ एक ही छत एक ही रूप के नीचे। और इतना ही नहीं, ये ना ऑपरेट करते हैं 7 days a week फ्रॉम 8 AM to 8 PM। तो अगर आपके पास वीकडे में टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप बिजी चल रहे हैं, तो वीकेंड पे चले जाइए, कभी भी वॉक इन कर सकते हैं और कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
4: ओह हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
7: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
5: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
9: Papa, Father's Day पे क्या गिफ्ट चाहिए?
10: बेटा है तू मेरा, तुम लोग साथ बैठ जाओ, यही काफी है।
11: और वही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। All that your father needs is good food, great company and unforgettable moments. This Father's Day weekend from June 19th to 21st, take your dad to the Flavor Lounge Frisco. Indulge in refined flavors, elegant dining and moments that truly matter. Plus, every father gets one free cocktail or mocktail. The Flavor Lounge on Preston Road near Malabar Golden Diamond Complex. Call 469-712-3591 and reserve your table today.
12: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
14: क्या मतलब?
15: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद मैनेज कर लेंगे।
15: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
14: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
16: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
18: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
19: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
18: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
18: सच में सब संभालेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

मैं भी चल ले आ आपकी ओर। जी हाँ, मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फनेशर रेडियो 104.9 एफएम। स्टूडियो में वक्त हो गया है 2:08 और अभी ना, और आज हमारा साथ लंबा चलने वाला है। आज मैं 2:30 नहीं जाने वाली, आज मैं 3 तक आपके साथ हूँ। आपके सॉन्ग्स की फरमाइश ले सकती हूँ, लेकिन उसके पहले मुझे आपको कुछ इंटरेस्टिंग अमेजिंग चीजें बतानी है जो फ्रिस्को, डैलस, अर्विंग आसपास में हो रही है। और उन्हीं में से एक नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि तनिष्क जो है ना, अपना फेस्टिवल ऑफ एक्सचेंज, एक उनका सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप चाहे तो वहां जाएं, अपना ओल्ड गोल्ड जो है आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको मिलेगा $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम ऑन एक्सचेंज गोल्ड विथ डायमंड परचेसेस। मतलब आप गोल्ड को एक्सचेंज करके $5 एक्स्ट्रा पर ग्राम लेके डायमंड्स खरीद सकते हैं। और अगर 9 कैरेट से ऊपर का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज है तो उस पर 0% डिडक्शन है। तो मौका है आपको, आप अपने पुराने गोल्ड को नए समथिंग न्यू ब्यूटिफुल और टाइमलेस डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं ओनली एट तनिष्क USA। तो एक्साइटेड है तो जरूर जाइए तनिष्क में। और अभी वक्त हो चुका है एक हमारे दूसरे गिव अवे राउंड का। मुझे पता है आप लोगों को गिव अवे में बहुत मजा आता है और सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी होने वाला है। आपको इस सवाल का अगर जवाब पता है तो आपको मुझे कॉल करना है, बताना है। लेकिन एक सिर्फ एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन हमारे भी है कि अगर आपने ये गिव अवे जीता हुआ है चंडीगढ़ बाइट से, जो एलन में है, फ्रॉम लास्ट 1 month, अगर फन एशिया के किसी भी शो पे आपने जीता है, सो प्लीज डू नॉट पार्टिसिपेट। दूसरों को भी मौका दे चंडीगढ़ बाइट से कड़ाही पनीर या फिर कड़ाही चिकन खाने का, सबका हक है देसी टेस्टी मेन्यू का। तो सवाल ये है कि मैं आपको एक नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने वाले हूँ और आपको बताना है कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है। आपको कॉल करना है एट 972-235-5555 पे।

ये जो सॉन्ग था तुमसे ही, दिस वॉज फ्रॉम द मूवी जब वी मेट, स्टारिंग करीना कपूर एंड शाहिद कपूर. और इस गिव अवे को जीता है राजीव रंजन जी ने. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है फ्री कड़ाही पनीर या फिर कड़ाही चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स एलन. और मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं चंडीगढ़ बाइट्स के बारे में कि ये स्पेशल थाली सर्व करते हैं मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस जो हर लंच में ना रोटेट होती है, मतलब रिपीट नहीं होती. सो एक्साइटिंग, राइट? आप जरूर इसको ट्राई करें. यू नीड टू गो टू मैकडॉर्मड ड्राइव इन एलन. और या फिर अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए उनके मेन्यू के बारे में, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स के बारे में, तो विजिट कीजिए उनका वेबसाइट विच इज चंडीगढ़ बाइट्स .com. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस राजीव रंजन जी once again.

अगर आपको भी इंश्योरेंस कंपनी से डील करने में मुश्किल हो रही है आफ्टर अ कार और अ ट्रक एक्सीडेंट या फिर किसी स्लिप और फॉल इंसिडेंट के बाद, या फिर आप किसी को जानते हैं जिसको कि ये प्रॉब्लम है, जिसको कि कोई अच्छे अटर्नी का रिकमेंडेशन चाहिए, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा आपकी रेस्क्यू में हाजिर हैं और ये इंश्योर करेंगे कि आपको अपना ड्यू कंपनसेशन जरूर मिले। बहुत ही खास बात है उनकी टीम की कि यू डू नॉट हैव टू पे जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते। अगर आपको भी फ्री कंसल्टेशन चाहिए फ्रॉम अटर्नी ओमर ख्वाजा या उनकी टीम से, तो आपको रीच आउट करना है 4693005046 पे कॉल करके, या फिर आप विजिट करें attorneyomar.com। और हमें रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम साफी कि उनके लिए एक जो अमेजिंग धड़क धड़क जो सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी बंटी एंड बबली वो प्ले किया जाए, तो ये भी उनकी खिदमत में हाजिर है।

0: इसी तरह धड़क धड़क करते हुए, धुआं उड़ाते हुए आज का जो शो था आफ्टरनून अड्डा टेक ऑफ कर रहा है, जी हाँ खत्म हो रहा है। लेकिन मैं हूँ आपके साथ अगले आधे घंटे के लिए भी, और जाते जाते बता देना चाहती हूँ एजी फिनटेक्स के बारे में। इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन US और ये इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। AGFinTax.com पे रीच आउट कर सकते हैं या फिर उनको कॉल भी कर सकते हैं उनके वेबसाइट पे।
1: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
2: अरे कहना क्या चाहते हो?
3: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
6: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट।

0: some of the best Punjabi food in Dallas. From buttery curries to authentic Punjabi street food favorites, straight from Chef Gagan Pannu's kitchen. So next time life gets stressful, just take a dose of Kulcha Therapy at Chandigarh Bites Express.
1: And now at a bigger location, just 3 doors down, with limited reservation available. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं.
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
4: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं हीरो.
6: घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी?
7: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
0: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
7: सच में बिल्कुल घर जैसा.
0: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
8: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
8: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
9: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
10: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.

गुड आफ्टरनून डैलस, आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो विद मी यानी कि आरजे सिमी। और यूजुअली तो मैं 2:30 बजे चली जाती हूँ, लेकिन आज आपके लिए बोनस सेगमेंट आधे घंटे और रुक गई क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स हमें कॉल कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। खैर, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी हाँ, वर्ल्ड म्यूजिक डे आ रहा है ऑन June 21st और हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है हमारा गूगल फॉर्म भरिए, जहाँ की हमने आपसे पूछा है कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज। हम ऐसा मानते हैं कि हर मूड का अपना एक मेलोडी होता है, चाहे वो रोमांस हो, हार्ट ब्रेक हो, वेडिंग एंथम हो या फिर पार्टी फेवरेट हो। हम जानना चाहते हैं कि आपके फेवरेट, आपके टॉप पिक्स क्या है, क्योंकि अगर आपकी फेवरेट सॉन्ग ने जगह बनाई इन दी फाइनल प्लेलिस्ट ऑन June 21st ऑन द वर्ल्ड म्यूजिक डे, तो फन एशिया की तरफ से आपको मिलेगा एक्साइटिंग प्राइजेस। ये मौका क्यों गवाना है, बिल्कुल हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर आप फन एशिया के भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां आपको गूगल फॉर्म मिलेगा जिसको कि आपको फिल करना है।

ये गाना सुनते ही आपको 2012 की रिलीज हुई मूवी कॉकटेल जरूर याद आ गई होगी। कितना फन था। अब यही ड्रामा, यही रोमांस और यही फ्रेंडशिप इज बैक विद फ्रेश न्यू ट्विस्ट और फ्रेश न्यू फेसेस। इसमें है शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना। मूवी है कॉकटेल 2, रिलीज हो रही है June 19 को विद अ न्यू स्टोरी, न्यू इमोशंस और ब्रांड न्यू कॉकटेल लव का, फ्रेंडशिप का, हार्ट ब्रेक का आपका इंतजार कर रही है थिएटर्स में। तो जरूर जाइए June 19 को। और कॉकटेल 2 की बात हो रही है और द मोस्ट फेमस, मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग जो अभी चल रहा है उसको ना बजाया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। एंजॉय कीजिए।

0: अगर आपको हेल्प चाहिए एक स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज के लिए थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज या कोई भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर आप एक कंसल्टेशन ढूंढ रहे हैं, देन यू शुड लुक आफ्टर CPA सुधीर पाए. वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को बहुत ही स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज बनाने में वाया लॉन्ग टर्म वेल्थ, या फिर उनको रिटायरमेंट के लिए या किसी भी तरीके का अगर इन्वेस्टमेंट ग्रो करना है ना, तो माई टाइम इक्विटी परफेक्ट सोल्यूशन लेके आता है डिजाइंड अराउंड योर.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन.
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax.
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर.
3: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
4: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
5: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the Grand Opening Week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
6: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
7: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
6: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
7: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब.
8: मामू, देखो क्या हो गया.
9: ओ, क्या हो गया?
8: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
9: ओए, जर्मन का कमाल है.
8: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
9: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
10: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
11: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
12: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
11: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
14: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना,
8: फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
15: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
16: हाँ।
15: घर रिलोकेट करनी है?
16: हाँ।
15: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
16: हाँ भाई हाँ।
15: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
6: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
17: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: वेलकम लिसनर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर. दिस इज योर होस्ट प्रौढ़ भाटिया सिटिंग इन टुडे फॉर किरण. आज आप लोग का क्या मूड हो रहा है मुझे आपसे ये पूछना है. शी इज बिजी टुडे एंड आई एम सिटिंग इन फॉर हर, बट आई वांटेड टू रिमाइंड यू लिसनर्स टुडे, बी अ ब्लेसिंग, बी अ फ्रेंड, एनकरेज समवन, टेक टाइम टू केयर, लेट योर वर्ड्स हील एंड नॉट वूंड. Count your blessings and be grateful that you are in a position to help others. Energy is a genuine heart, always wins in the end, because energy eventually comes back. Energy remembers where it belongs. Be that energy. And a shout out going out to Simi also, who covered the show for half an hour. I hope you're having a wonderful day, listeners. I hope you're enjoying this beautiful, very nice afternoon, जिसमें गर्मी भी नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है जैसे हो जाती है नॉर्मली. With that, शुरुआत करते हैं शो की with this lovely track. ये है धमाल फोर से लिया गया गाना जो है चटनी. अजय देवगन है इसमें, अर्शद वारसी हैं, रितेश देशमुख एंड lot of other people, रवि किशन, I believe जावेद अख्तर as well. इस सॉन्ग के बाद आई हैव अनदर कपल ऑफ रियली कूल सॉन्ग्स लाइंड अप फॉर यू, लेटेस्ट फिल्म सॉन्ग्स, एंड आई विल बी टेकिंग इन योर रिक्वेस्ट एज वेल. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555.
1: गूगल के अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर एमजी गाड़ी में रखी गई. और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका.

ऑन न्यूज लेवल आई वुड से कि आजकल जो किंग की बातें चल रही हैं उसकी एंटिसिपेशन काफी कंटिन्यू हो रही है. दैट्स शाहरुख खान एंड सुहाना खान्स फिल्म किंग, विच हैज रिसेंटली रैप्ड अप फिल्मिंग स्केड्यूल्स इन मुंबई एंड केप टाउन. एडिशनली ऋतिक रोशन इज रिपोर्टेडली स्टेपिंग इन फॉर पिवोटल कैमियो इन जेलर 2. खूब बातें होंगी बॉलीवुड की और आपसे होंगी रिक्वेस्ट की भी रिक्वेस्ट. इफ़ यू हैव अ रिक्वेस्ट देन यू कैन डेफिनेटली गिव मी अ कॉल एंड आई विल प्ले इट फॉर यू, स्पेशली अगर वो 90s एंड ऑनवर्ड्स की फिल्म हो. अभी एक और फिल्म आई है जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल. अक्षय कुमार है इसमें, दिशा पत्नी है, बहुत सारे इनफैक्ट कैरेक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर फिल्म में. तो चलिए उससे एक गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ. ऊंचा लंबा कद फॉर एवर इज द नेम ऑफ दिस सॉन्ग.

ऑलराइट, बहुत ही कूल सा गाना था ये. आई एम श्योर यू एंजॉयड इट. आई डेफिनेटली एंजॉयड इट. ये फिल्म थी वेलकम टू द जंगल. ऊंचा लंबा कद फॉर एवर नाम है इस पर्टिकुलर गाने का. और एक से बढ़कर एक गाने तो बहुत वाओ टाइप आ रहे हैं. वाओ की रिक्वेस्ट भी आई है, मैं थोड़ी देर में वो प्ले करूंगी फॉर श्योर आप लोगों के लिए. एक और रिक्वेस्ट आई है, गोइंग बैक अ लिटिल बिट. दिस वन फीचर्स माधुरी दीक्षित एंड सलमान खान. तो चलिए ये गाना आप लोगों के लिए प्ले करती हूँ. एंड उसके बाद एक दो और रिक्वेस्ट, टू मीट यू राइट हियर. खूब मस्ती हो रही है लिसनर्स. कंटिन्यू कॉलिंग मी एंड गिविंग एंड आस्किंग फॉर व्हाट यू'ड लाइक टू प्ले. हियर इज योर सॉन्ग. It's loading up.

0: कम से कम।
1: ऑलराइट, इस फिल्म में थी माधुरी दीक्षित और आवाज़ आपने सुनी अभी अलका याग्निक की। वेयर शी इज़ आजकल, वो बिल्कुल नहीं है, जिसे कहते हैं ना, उनके साथ गा रहे थे मुकुल अग्रवाल, बट शी डजंट सिंग एनी मोर बिकॉज शी इज़ हैड सम इशू विद द हियरिंग एंड वी होप दैट शी फील्स बेटर एंड शी कम्स बैक। जहाँ माधुरी दीक्षित की बात आई है तो एक फिल्म आई है अभी नेटफ्लिक्स पे, माँ बहन, डायरेक्टेड बाय सुरेश त्रिवेणी एंड अलॉन्ग विद माधुरी दीक्षित देर वेर अदर एक्टर्स टू, तृप्ति डिमरी। एंड ये फिल्म जिसे कहते हैं ना, बहुत इसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। इस फिल्म में धरना दुर्गा हैं, रवि किशन हैं, गीतांजलि कुलकर्णी हैं, एंड दिस हैज स्पार्क्ड कॉन्वर्सेशंस अक्रॉस सोशल मीडिया, ड्रॉइंग बोथ प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। डायरेक्टर सुरेश त्रिवेणी हैज नाउ शेयर्ड हिज थॉट्स ऑन द वेरीड रिएक्शंस द फिल्म हैज रिसीव्ड, बट ही हैज सेड दैट वी आर वेरी एक्साइटेड। ही सेड फिल्म मेकिंग एंड सिनेमा are the most accessible art forms. Everyone has an opinion and everyone is familiar with the medium, especially since it has become an everyday access. But he says it's cinema. It's bound to happen that some people will connect with it and some people will not. While he welcomed differing viewpoints, the filmmaker stressed that criticism should come with reasoning rather than blanketing dismissal. He also said, we are happy that people have connected. That doesn't mean do not look at people who have not liked it. But it's just that you can't have one line or word and just trash it. You have to explain why, because the people who have liked it are explaining it to me. तो ये सिंपल बात है कि उनको मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन ये फिल्म मैंने भी देखी है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट देख खत्म करी है, और बिल्कुल ही डिफरेंट रोल है इसमें माधुरी दीक्षित का एंड तृप्ति डिमरी, बोथ ऑफ देम हैव एक्टेड रियली वेल। नीडलेस टू से, ऑफ कोर्स माधुरी दीक्षित इज अ ग्रेट एक्ट्रेस, बट देन तृप्ति हैज ऑल्सो शोन हर प्रोवेस एंड द एक्सेंट एंड द वे द डायलॉग्स हैव बीन डिलीवर्ड इज रियली पावरफुल। अभी 3:30 बजे का ब्रेक आ रहा है, उसके बाद 3:30 से 4 आई हैव वन क्विज कमिंग योर वे, देन 4 से 4:30 अनदर गिव अवे कमिंग योर वे। तो कहीं मत जाइए, जस्ट यहीं रहिए एज आई गेट रेडी टू गिव यू गाइज फ्यू गिव अवेज। 9722355555 इज द स्टूडियो नंबर।
2: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
3: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
2: Renew?
3: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
2: What better way to celebrate than with something timeless?
3: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
8: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 years, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
9: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
10: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
9: सच में एक्सपेंसेस से इनकम? कैसे?
10: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
9: वाह, मतलब पैसे

0: कैसे?
1: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
2: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
1: एग्जैक्टली। अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
2: नंबर बोल जल्दी।
1: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
3: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
10: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
11: सच में सब संभाल लेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

And listeners, welcome to Funasia Radio, bringing the community together. As you all know, आजकल FIFA चल रहा है और अभी जो मैच हुआ था मॉर्निंग में वॉज मैच क्या बोलूँ गेम हुआ था मॉर्निंग में, मैं क्रिकेट का सोच रही थी उसके बारे में कुछ बताऊंगी. वॉज क्वाइट अ शॉक. वी आर टॉकिंग अबाउट अ ड्रॉ बिटवीन स्पेन एंड केप वर्डे. दिस वॉज अ ह्यूज शॉक इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री. एंड ऑफकोर्स आप लोग देख ही रहे होंगे उसमें कि न्यूज़ क्या है, लेकिन जो वजीना हैं यानी कि केप वर्डे के जो गोलकीपर हैं 40 ईयर ओल्ड, ही इज़ डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट. ही इज़ इंजॉइंग एन एक्सप्लोजन इन पॉपुलैरिटी. ही हैज़ नाउ 1.7 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, द मेजॉरिटी ऑफ हुम केम मे बी राइट आफ्टर दिस किक ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रॉ. And he said he has the honor to represent the country he loves. And he says he got a little teary-eyed. He said, I cried after the game because I grew up with my grandparents when I was a kid and they could not be there. They passed away a few years ago. My mom could not be here either because of a visa issue and the money we had to pay for it. We did not manage to do this in time. Jo bhi kaho, kya unke liye bahut hi huge moment hai. Nobody expected ki a draw hoga match. It was already predicted ki Spain will definitely, you know, make a few goals, if not just one, over this Cape Verde country. But it was a draw. All you FIFA fans, I'm sure, are enjoying that. Talking about FIFA, cricket ki baat ye hai ki Virat Kohli, he, you know, is known to have this amazing, very tough mental. He has a very strong, जिसे

0: Etienne, his way of thinking is very strong, and he credits that to some of the books he has recently read. He said that he read Autobiography of a Yogi, and that had the biggest impact. Kohli said it changed his perspective on life and pushed him to think beyond fame and success. And the other four books are Open, the third one is Detox Your Ego, fourth is The Secret, and fifth is Rafa, My Story. These books helped him understand pressure, control, ego, stay positive, and build a stronger athlete's mindset. Together, these books played an important role in his transformation into one of the most focused and mentally tough cricketers in the world. Because to have that athlete's mindset, you have to keep training your mind. Don't you think, listeners? वो कांस्टेंट अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है. और एक बात आपको ज़रूर बताऊंगी मैं कि वर्ल्ड म्यूजिक डे आ रहा है. जी हाँ, एंड फनी एशिया इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे बिकॉज एवरी मोमेंट हैज अ सॉन्ग, एवरी मूड हैज अ मेलोडी, वेदर इट्स रोमांस और हार्ट ब्रेक, अ वेडिंग एंथम और पार्टी फेवरेट. वी वॉन्ट टू नो योर टॉप पिक्स. सो फ्रॉम जून 1st थ्रू जून 15th, जो कि आज है, फिल आउट आवर गूगल फॉर्म एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग्स अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज. फनेजा विल सिलेक्ट द मोस्ट लव्ड सॉन्ग्स फ्रॉम ईच जॉनरा, द सॉन्ग्स दैट हैव बिकम द हार्ट बीट ऑफ मिलियंस. एंड ऑन जून 21st, विच इज वर्ल्ड म्यूजिक डे, एवरी फनेजा शो विल बी डेडिकेटेड टू अ डिफरेंट म्यूजिक जॉनरा फीचरिंग द विनिंग सिलेक्शंस. एंड हियर इज द एक्साइटिंग पार्ट. The listener whose song choices make it into our final playlist the most will win exciting prizes. Visit funasia.net or follow our social media pages for details. Celebrate the magic of music with Funasia 104.9 FM. And we are getting a call. Funasia Radio, you're live on air. Who's this?
1: Hi, my name is Akbar. आप वो गाना लगा पाएंगे? मेरा फेवरेट गाना है वो, कब से मैं वो गाना नाम है, मैं आपको टाइटल भेजेंगे. एक से वो है R A B B A M E R E,
0: रब्बा मेरे रब्बा
1: जी.
0: Oh sure, I'll play it for you. It's a lovely track.
1: हाँ, मेरा नाम अकबर है.
0: Okay, अकबर आपके लिए आ रहा है रब्बा मेरे रब्बा. Enjoy.
1: Thank you.
0: Lovely track going out to Akbar, Kareena Kapoor, 30 mein with Tushar and Sonu Nigam ki awaaz mein.

बड़ा क्यूट सॉन्ग रब्बा मेरे रब्बा रब्बा फ्रॉम द मूवी मुझे कुछ कहना है. करीना कपूर एब्सोल्युटली लुकिंग रैविशिंग और इसमें तुषार कपूर भी हैं. सिंगर ऑफ कोर्स आप पहचान ही गए होंगे, सोनू निगम. म्यूजिक डायरेक्शन दिया था अनु मलिक ने. और अब बारी आ गई है लिसनर्स फॉर अ क्विज. एंड क्या मिलने वाला है आपको? मिलने वाला है रेड हॉट चिली पेपर से दिस गिव अवे, ड्राई चिली चिकन और चिली बेबी कॉर्न और डालस बेस्ट बटर चिकन विच इज आर एच सी पीज चिकन मक्खन वाला. यू कैन पिक अप द गिव अवे फ्रॉम लोकेशन रिचर्डसन, मिकिनी और एलन. प्लीज नोट दैट यू कैन नॉट पिक दिस फ्रॉम फ्रिस्को. ऑल्सो लिसनर्स मेक श्योर दैट यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे और एनी ऑन एनी अदर शो एट फनेशिया इन द लास्ट वन मंथ. अगर आपने ये गिव अवे किसी भी और शो पे या शो पे जीता है विद इन अ मंथ लास्ट मंथ, देन यू डोंट क्वालिफाई. अदरवाइज गेस व्हाट, यू डू, बिकॉज द आइडिया इज यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ. एंड लोकेशंस आर रिचर्डसन, मिकिनी और एलन. एट द सेम टाइम आपकी इंफॉर्मेशन जब हम दे देंगे टू दीज लोकेशंस, यू हैव 7 days टू रिडीम द ऑफर. सो क्वेश्चन इज दिस, जो मैं गाना आप लोगों के लिए प्ले करने वाली हूँ, आपको बताना है. इट्स अ मल्टी स्टेप क्वेश्चन. एक तो ये कि ये फिल्म कौन सी है, दूसरा इस फिल्म में हीरो हीरोइंस कौन हैं, तीसरा फिल्म का म्यूजिक किसने दिया है और फाइनली इसे कौन गा रहे हैं. बस इतना सिंपल है. डायरेक्टर बेशक आप ना बताएं वो भी चलेगा, लेकिन ये चारों चीज़ें ज़रूरी हैं. डायरेक्टर थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं डायरेक्टर नहीं पूछने वाली आपसे. नेम ऑफ द फिल्म, हीरो हीरोइन, म्यूजिक डायरेक्शन एंड सिंगर्स नेम. एंड हियर इज द सॉन्ग. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555.

All right, congratulations going out to Monica Sharma who has won this giveaway from Red Hot Chili Pepper. इन्होंने एक महीने पहले within a month नहीं जीता है, so she qualified. And तो ये giveaway हो गया है, but एक और giveaway आ रहा है listeners 4 बजे के break के बाद. तो आप यहीं रहिए, कहीं मत जाइए. और मैंने कहा था कि इसके जो वो हैं, जो director हैं, that might be a difficult one because he might be a new director. I'm not sure. And I haven't heard his name before. His name is Mudassar Aziz. इन्होंने direct किया है इस particular film को. And by the way the songs look and the way the cast is, it seems like it's going to be a total paisa wasool. चलिए एक और आपके लिए brand new गाना मैं play कर रही हूँ Cocktail 2 से Valla और Shahid Kapoor. Shahid के साथ हैं Kriti and Rashmika. Preetam का music है. And let's hit it right here listeners. For your listening pleasure, this is your host Parul Bhatia.

Very cool song with a very different vibe. Shahid Kapoor usually does a lot of dancing. Isme he's just kind of moving casually, and singers are Bayani and Hardy Sandhu. Aur film hai Cocktail 2. Shahid Kapoor ke saath the Kriti Sanon and Rashmika Mandanna. Music hai Pritam ka and lyrics hai Amitabh Bhattacharya ke. खूब बढ़िया सा साउंड कर रहा था लिसनर्स. एक और माशूका भी बहुत पॉपुलर हुआ है कॉकटेल 2 से, विच आई विल बी प्लेइंग इन अ बिट. और आपके लिए एक बहुत ही कूल सा, जैसे कहते हैं ना गाना, उससे रिलेटेड एक गिव अवे भी आ रहा है, स्पेशली फॉर ऑल यू पीपल हु आर लिविंग क्लोज टू फोर्ट वर्थ. गेट रेडी फॉर दैट. Meanwhile, let me tell you listeners that Tanishq presents the Festival of Exchange. Exchange your old gold and get $5 extra per gram on exchanged gold with diamond purchases. Or 9 carat se upar ke gold exchange per 0% deduction. Turn your old gold into something new, beautiful and timeless. Only at Tanishq USA. TNC apply. Meanwhile, let's enjoy this other song jo main mention kar rahi thi from the same film Cocktail 2, Mashuka, right here for you before we go for a break.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
7: Kaun sa?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
7: अरे सारे तो सेम है।
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
7: ओ हाँ, ये तो अलग है।
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
10: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
9: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
11: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
12: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
11: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
12: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
8: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
13: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
14: Calculating route, rerouting. Rerouting.
13: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
14: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
13: क्यों?
14: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
13: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
15: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
14: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
20: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
21: Apni roots bhi aur Texas ka swag bhi, dono ek saath ek hi jagah, HEB mein. Royal Sona Masuri Rice ho, Nanak Paneer ho. या पार्ली जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे, और साथ ही एचईबी के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट एचईबी पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। एचईबी, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
0: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

0: Fun Asia Radio. You're live on air. Who's this?
1: Hey, this is Sailee.
0: Hi, Sailee. Okay, good. You're trying again. आप पहले ये बताइए कि आप इंडिया बाजार फोर्ट फोर जा सकती हैं?
1: Yes.
0: Okay, because ये giveaway Fort Worth से है.
1: Yeah.
0: Okay, great. So now you tell me कि ये फिल्म कौन सी है?
1: You want the singer name, right?
0: I need four things. Do you know the name of the film?
1: Durandar.
0: Right. And who's the director?
1: Movie director?
0: Yes.
1: Aditya Dhar.
0: Correct. Now, do you know the name of the music director?
1: Music director, yeah. Shashwat Sachdev.
0: Absolutely. Shashwat Sachdev. And singers, bhi pata hai aapko?
1: Yes. So singers is Madhubanti Bakshi, Jasmine Sandlers, and Shashwat Sachdev. Yeah.
0: Jasmine Sandals and Sandals, S-A-N-D-L-A-S, Sandals, जो भी कह सकते हैं उसको, एंड मधुबंती बागची. बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया सयाली. तो एक बार बताइए, आपको इस फिल्म के हीरो हीरोइन भी पता है?
1: या रणवीर सिंह एंड सारा अश्विन.
0: रणवीर सिंह बिल्कुल सही बोला, एंड
1: सारा अर्जुन इज एक्ट्रेस.
0: बिल्कुल सही बोला सयाली. तो आपका फुल नेम क्या है?
1: माय फुल नेम इज सयाली बाबर.
0: इज इट SAYALI?
1: यस, करेक्ट.
0: ओके सयाली, लेट मी टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ एयर एंड देन यस, कंग्रेचुलेशंस.
1: थैंक यू.
0: ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड. Listeners, thank you so much for calling. We already have a winner. I'm going to go ahead and play this lovely track for you from the very, very beginning. Worth it.

All right, and that song, of course, जिसे कहते हैं ना, उसमें इतना एंटरटेनमेंट है, इतना ग्रेट म्यूजिक है, इतना ग्रेट डांसिंग है, और फिल्म तो सबको पता थी. एंड द लकी विनर इज सियाली बाबर. कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वन दिस गिव अवे फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ. एंड अभी इस वक्त आपको पता है कि जो गाना था तौबा तौबा, जिसमें विकी कौशल थे एंड तृप्ति दिमरी, वो जो गाना गाया था करण औजला ने, राइट नाउ ही इज द मोस्ट पॉपुलर like an independent DJ online. He's the one who's been most searched. To chaliye si baat pe Karan Aujla ka Tauba Tauba gana suna jaye.

एंड लिसनर्स, इस वक्त एक और जिसे कहते हैं ना कि वायरल न्यूज ये हो रही है कि सलमान खान का न्यू लुक इज टोटली गोइंग वायरल. ही इज गॉट अ बस कट एंड पीपल आर लाइक ओ माय गॉड, क्या डिफरेंट लुक है भाई का. आप भी चेकआउट कीजिए. And I do have another song that is totally lined up for you, and I am taking in a few requests. ऐसे एक बड़ा cool सा मैंने article पढ़ा जिसमें मैंने देखा कि जो India में या जो जहाँ भी India, Pakistan, Bangladesh, वहाँ सारे जो पहलवान होते थे वो क्या खाते थे. लेकिन अब ये जो हम लोग इतने ज़्यादा conscious होते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन ये जो homemade food और daily routine होता था पहलवान का, if you are into bodybuilding, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा मुझे. एक तो दूध, यू नो मिल्क इज सपोज टू बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन अलोंग विद मिल्क. घी इज सपोज टू गिव यू अ लॉट ऑफ प्रोटीन एज वेल एज न्यूट्रिशन एंड द राइट अमाउंट ऑफ फैट्स अलोंग विद आमंड्स एंड चना जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत स्ट्रेंथ होती है. और दही इज सपोज टू बी वेरी गुड फॉर यू. एंड फाइनली दिस वन इज कॉल्ड सत्तू. Sattu is supposed to be poor man's protein, and it's proven that it's a source of protein and other nutrients. Before protein shakes came and tubs and shaker bottles, there was sattu. It was made with roasted Bengal gram that is ground into flour. Sattu has been a nutritional powerhouse for centuries. It is rich in protein, fiber, and complex carbohydrates. It provided a convenient source of energy for physically active individuals. It is said that pehlwans used it and they would mix it with water or milk or jaggery to create a filling drink that could be consumed quickly before or after training. It was inexpensive, easy to prepare and highly satisfying. And apparently ab ye already bana banaya mil sakta hai, nahi to India mein to banta tha. Especially scratch se aap ye jo dal hai usko aap roast karenge Bengal gram ko, and then aap uska flour banayenge. लेकिन अब क्या है कि ये रेडीमेड भी मिलता है फॉर ऑल दोज पीपल हु आर क्रेजी अबाउट न्यूट्रिशन एंड क्रेजी अबाउट फीलिंग फिट एंड लुकिंग ग्रेट. दिस इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन. इसलिए बस थोड़ी देर में एक इंटरव्यू भी आ रहा है आपके लिए लिसनर्स, तो यहीं रहिए, कहीं मत जाइए. और ऑल्सो आई वॉन्ट टू शेयर कि जो भी आप लोग सुनते हैं, द व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड इन दीज लाइव अनाउंसमेंट्स एज वेल एज द इंटरव्यूज वी डू ऑन आर शोज आर पेड एडवर्टीजमेंट. And they do not necessarily represent any official views of the radio station nor the RJ. I wanted to mention that for you. Here's another very cool song. Varun Dhawan, Janhvi Kapoor, Bichuriya.

जी हाँ लिसनर्स, नेक्स्ट गाना आपके लिए जो आ रहा है वो भी बहुत ही सा कूल सा गाना है. सुपरस्टार कूली मोनिका रजनीकांत हैं इसमें. और चलिए गाना सुनते हैं. और 4:30 बजे आ रहा है एक इंटरव्यू. सो स्टे राइट हियर, डोंट गो एनीवेयर.

0: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
1: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
2: अरे कहना क्या चाहते हो?
3: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू, कॉल 214-666-6259 और विजिट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर .com। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
4: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
5: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
7: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Ducttime removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit call

If you have involved in a car accident or a truck wreck, वैसे तो उम्मीद करता हूँ कभी आपके पास ये प्रॉब्लम ना आए, but if you ever are involved, remember a name. The name is Attorney Omar, and he can fight for you. The best part is that जब तक आप जीतेंगे नहीं, आप कुछ पे नहीं करेंगे. And that is on the website for you guys to find more information, attorneyomar.com. That's attorneyomar.com. And I personally believe that you should have this because I've been through this situation a couple of times. And when I had a good lawyer, I did get compensated. And I think very fairly as well. 972-235-5555 is the number to the studio. Today we started the show off by talking about mental health. And I think Men's Health Week is what we're kicking off today, 15th of June, 2026. It is to talk about, you know, this encouraging our men to take charge of their health. The annual observance highlights the importance of healthy bodies, regular exercise, good nutrition, and preventive care. Take this week to schedule a checkup, start a new fitness routine, or encourage the men in your life to prioritize their well-being. And I think, main hamesha show ke end mein kehta hoon, but aaj phir bhi kahunga, ke the person that you see in the mirror, be that a man or a woman, is the most important person. Yehi insaan hai jo aap khud hain. इसी के अराउंड सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं. बी दैट योर पार्टनर, बी दैट योर पेट्स, बी दैट योर किड्स, बी दैट योर फैमिली मेम्बर्स, योर सिबलिंग्स, योर बिजनेसेस, योर पैशंस, योर टेस्ट, योर यू नो एवरी जॉय ऑफ लाइफ इज कमिंग थ्रू यू. एंड यू नीड टू मेक योर सेल्फ द प्रायोरिटी. देखो, अगर हम खुद ही खुश नहीं हैं, एंड ऐसा हम करते हैं, अक्सर करते हैं कि यू नो लेट्स से इफ यू वांट टू रेस्ट इन वन डे, बट द थॉट इज कमिंग कि नहीं यार उसको बोला था वहां मिलने जाऊंगा तो रेस्ट बाद में करता हूँ, उसको मिलने जाता हूँ. यार इफ यू वांट फील लाइक रेस्टिंग, गिव दैट बॉडी दैट टाइम बिकॉज इट्स योर बॉडी. इट्स इफ इट्स टेलिंग यू टू रेस्ट, टेक द टाइम आउट टू रेस्ट. अगर आपको लगता है कि आपको कहीं छुट्टी लेने जाना है, टेक द टाइम फॉर योर सेल्फ, बिकॉज वॉट आर यू डूइंग एवरीथिंग फॉर, फॉर थिंग्स दैट आर अराउंड यू. बट अगर आप ही अच्छे नहीं होंगे तो उन सब चीज़ों का क्या फायदा. So a little part of my thought for you guys, taking you to the next track right here. And of course, naye gaano ki request or dedication main hamesha lunga. And if you want to talk about something about mental health, about men's health, I am all ears. Aur vaise bhi, agar koi pareshani aap tak aa pahunchi hai, which you are not able to talk to anybody about, I am all ears.

0: Taken from the movie, जिसका नाम है जी गिनी वेड्स सनी. छाप तिलक इज द नेम ऑफ दिस ट्रैक एंड गिनी वेड्स सनी 2 है ये. इससे पहले भी एक आ चुकी है एंड आई थिंक डेफिनेटली अ फन मूवी. अभी तक मैंने देखी नहीं है बट द वे इट लुक्स इट इज जस्ट लाइक अ हैप्पी जॉयफुल मूवी. 9722355555 इज द नंबर ऑफ द स्टूडियो. और ये नंबर आप लोगों के लिए है यार. आज क्या बात, मतलब मेरी बातें ज़्यादा इमोशनल लग गई आपको, बात नहीं कर रहे हो आप मेरे साथ. बताइए ना कि मेरी बात कैसी लगी आपको. डू यू थिंक वी शुड फोकस ऑन आवर हेल्थ फर्स्ट? डू यू थिंक वी शुड फोकस ऑन अस फर्स्ट? आई टोटली अग्री विद दिस. एंड दिस जोल्ट हैपेंड टू मी बिकॉज ऑफ माई रिसेंट सिकनेस, जहाँ मुझे रियलाइज हुआ यार कि हम सब भाग तो रहे हैं बट उस भागने के प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हैं. And literally everything revolves around you. अगर आपको कुछ खाना पसंद है and if you lose your taste bud, the food is worth nothing. If you like to travel and you get sick and you can't travel, well, सब कुछ आपके ही अराउंड होता है. So make sure to take care of yourself. और हाँ, अगर कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, लोन की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप लोग ना बैंक में जाके थोड़ी देर सो जाना, क्योंकि मैंने आज ही अखबार में पढ़ा था कि इस कई बैंकों में सोने पर लोन मिल रहा है. तो गो ट्राई टेकिंग अ नैप एंड मे बी थिंग्स विल चेंज फॉर यू. ऑलराइट, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है. यू गाइस डोंट गो एनीवेयर बिकॉज आई हैव अ लॉट मोर कमिंग अप इंक्लूडिंग टू गिवअवेज कमिंग फ्रॉम पंचतारा एंड पीएमजे. व्हाट आर दे? आई विल लेट यू नो जस्ट इन अ बिट.
1: Our anniversary is coming up. Shall we renew our vows?
2: Absolutely. And while we're at it, I should renew some of my old jewelry too.
1: Renew?
2: Yeah, I'll exchange it at Tanishq for the design I've been eyeing for a while. They take old gold above 9 carat from any jeweler for full value with zero deductions. Also, we get an extra $5 per gram on exchanged gold with diamond purchases.
1: What better way to celebrate than with something timeless?
2: Visit Tanishq, Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: और सुनाओ, house hunting कैसी चल रही है?
4: क्या बताऊं? It's hard to find a realtor who offers great service and also cash back at closing.
3: You need to call Ajay Prabhu of Beam Real Estate. He's an experienced realtor who provides exceptional service plus cash back at closing. Ajay reviews each house thoroughly and shares all the pros and cons and negotiates the best price and builder incentives. Just visit ajayprabhu.com and see why people are raving about him.
5: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल. कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
6: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
7: लिया.
6: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
7: नहीं आया.
6: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 9728637772. दैट्स 9728637772.
8: विजिट www.sanadainc.com टुडे.
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
10: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
11: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI powered platform real time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
12: Chicken banana. Chicken banana? Bro, banana nahi. Banana.
7: मतलब make the chicken right.
8: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
13: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

देखो, आप सब लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि जो डर गया वो मर गया। अब ये कहावत तो हमने भी सुनी है, पर किसी ने नहीं बताया ये कहावत बनी कैसे थी। दरअसल चाइना में दो भाई रहते थे, ठीक है, एक का नाम था जो, एक का नाम था वो। ये बात पुराने टाइम की है। अब पुराने टाइम में क्या होता था कि घरों के बाहर जो टॉयलेट वगैरह होता था वो घरों के बाहर होते थे, और जैसे एक सोसाइटी बनी हुई है 10-15 घरों की, तो वो सब उसको शेयर करते थे। नहाने का सिस्टम अंदर होता था, बट द अदर सिस्टम वॉज आउटसाइड, और वो थोड़ा सा घर से दूर होता था। तो अब रात हो गई, और रात को लाइटें तो स्ट्रीट लाइट होती नहीं थी उस ज़माने में। कैंडल लेके जो था वो उसको आया जी, और वो उठा, उसने कैंडल जलाई और जा रहा था धीरे धीरे धीरे धीरे अपने बाथरूम की तरफ। जैसी जो जा रहा था उसको रास्ते में भूत दिख गया। तो जो डरा, जो जब डर गया उसने चीख मगारी मारी बहुत ज़ोर से, आ कर कैसे। तो वो ने वो चीख सुनी जो का भाई, वो भी आया भागा भागा। अब वो ने भूख देखा तो वो को हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। पर तब से कहावत बनी थी कि जो डर गया वो मर गया।

बंदा बिंदास है जी, नाम अरविंदास है। 5:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, और अब आपको कोई भी पूछे जो डर गया वो मर गया तो बोलना बेटा तुम्हें क्या पता, हम बताते हैं। अब आप बता सकते हो, बहुत सारा ज्ञान है हमारे पास, घमंड कभी भी नहीं किया।

0: ऊपर पान की दुकान नीचे जूली का मकान ताता ताता थैया गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो हूज दिस
1: सॉरी मैम आई डोंट वांट टू बी ऑन
0: एयर नहीं क्यों हम तो चाहते हैं कि हम प्यार बांटें बट कोई बात नहीं आप ऑफ एयर रहिए मैं आपसे ऑफ एयर बात करता हूँ होल्ड द लाइन फॉर मी प्लीज दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो 5:30 हो चुके हैं जनाब एंड दैट मीन्स इट इज टाइम फॉर अ गिव अवे राइट आफ्टर द नेक्स्ट ट्रैक जो कि मैं आपके लिए लगाने लगा हूं और जो गिव अवे है वो होने वाला है जी मस्त सा एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम पंज तारा पहले बता देता हूँ क्या है ताकि आप उसके लिए हमारी वेट करें एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम दिस वेरी ओन पंज तारा जो पहले फ्रिस्को में था जी राइट इन द डाउन टाउन एरिया और उसके बाद आ चुका है राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ कस्टर एंड मैकडर्मट और ये जो है जी आपके लिए लेके आए हैं चांस टू विन अ फ्री आलू कुलचा ओए होए या छोले भटूरे मैंने खाए हैं इनके छोले भटूरे ज़बरदस्त हैं एंड आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए क्योंकि कहते हैं कि सब्र का फल मीठा है पर यहाँ के छोले ज़बरदस्त हैं इस गाने के बाद

0: like you ladies and you people are so pretty and so handsome for the men, yaar. Pretty for the ladies. So you both are wow in your own ways. एक बार ये रियर व्यू मिरर में दोबारा अपने आप को देख लो जरा, इतने दिन की थकान के बाद भी क्या फ्रेश चेहरा है. मतलब ये हल्दी का कमाल है, ये घर के नुस्खों का कमाल है, कि ये मेरे जैसे लोगों का कमाल है जो कहते हैं वाओ एंड जस्ट गिव यू अ ब्लशिंग स्माइल. चलो खैर, मेरे पास कोई जुड़ गया है जी वापस ऑन द एयरवेज ऑफ वन एशिया. गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू?
1: Good, how are you, Marvin?
0: God is good, life is beautiful. हमेशा यही कहना चाहिए, because if you look at life in a very beautiful way, it smiles back at you.
1: Absolutely, agree with you. So I wanted to tell you that today I've given you a new name, Baba Marvin, because what you the topic of today, you know, health and health is wealth. So and mental health is very important and self care. So I agree with you on that. I also wanted to tell you that I've been listening to you for past 10 years, and jab bhi ye jo wo wali story, whenever you repeat, I listen like a little girl, and as it's like that back in school, I'm listening to a teacher who's telling me that story and just crack you up. So you are completely worth listening, Marvin. 10 years,
0: thank you,
1: and God knows many more.
0: आपने जो बात बोली कि यू सॉ अनदर साइड ऑफ मी, देखो साइड तो हर बंदे के पास होती है, बट आई यू नो ऑलवेज वांटेड पीपल टू रियलाइज कि मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इन जनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एवरीथिंग हैज टू कॉइंस. जैसे कि यार हाँ मेरी फनी साइड है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई एम अ वेरी यू नो, बस आपको पता ही है यार, अब अपने खुद मुँह मियाँ मिठो थोड़ी बनूंगा. हेयर वी गो चुनरी चुनरी. बट इसके पहले मैंने तो ये कहा था कि गिव अवे आ रहा है आपके लिए. अब वो गिव अवे क्या है जी? वो है जी पांच तारे के छोले भटूरे या उनका आलू कुलचा. और आपको अगर जीतना है तो मुझे एक सवाल का जवाब आपको सिंपल सा देना है. इफ़ यू गिव मी द राइट आंसर, यू गेट योर सेल्फ दिस गिव अवे फ्रॉम पांच तारा. अब गिव अवे में सवाल क्या है जी? सवाल ये है कि ये जो मैं गाना लगा रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम द न्यूअर मूवी जो अब आ रही है, दिस इज़ अ रीमेक ऑफ द ओल्ड सॉन्ग. आपको मुझे बताना है कि इस फिल्म में म्यूजिक कौन दे रहा है इस मूवी को. हु इज द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर दिस मूवी? 9722355555 नंबर टू द स्टूडियो, कॉलर नंबर 3. हमेशा की तरह दैट गिव्स मी द राइट आंसर, गेट्स पंच तारा का यमी खाना.

0: Alright, let's see who do we have here with us on the airwaves of Fun Asia. कौन है हमारे साथ? Good evening, Fun Asia. कौन बोल रहा है?
1: भावेश.
0: भावेश, भावेश भाई कैसे?
1: बस मस्त, आप कैसे हो?
0: मैं भी आज फैंटास्टिक नहीं हूँ. आज मैं थम्स अप स्टिक हूँ क्योंकि मैं थम्स अप पी के आया भाई. उस पर बना हुआ था अभिषेक शर्मा, वर्ल्ड कप का स्पेशल कैन था ब्लू कलर का. आप ये बताएं, आपको मालूम है इस मूवी का म्यूजिक डायरेक्टर कौन है?
1: अन्नू मलिक.
0: अन्नू मलिक तो मैंने पुरानी वाली का नहीं पूछा था सर, नई वाली फिल्म का पूछा था. ये रीमेक वाला गाना है, उसकी तरफ जाना चाहता हूँ. कौन बताएगा वो? गुड इवनिंग फन एजा.
2: हाय, दिस इज मिरल.
0: हाय मिरल, हाउ आर यू?
2: गुड, हाउ आर यू
0: मिरल? डू यू हैव अ मिरर?
2: यस, राइट इन फ्रंट ऑफ मी.
0: ओह या, कैन यू टेक अ लुक?
2: यस.
0: आरंट यू लुकिंग सो वाओ?
2: ऑलवेज.
0: Ah, there we go. All right, now tell me, do you know the music director of this new movie?
2: There are like multiple. There's one Tanish Bagchi, then Javed Mohsin.
0: Tanish Bagchi and Javed Mohsin. Aap mere liye hold kijiye, don't go anywhere. Let's see, who do we have on the other side here? Good evening, Fun Asia. Who's this?
3: Hi, Tina.
0: Hi, Tina. How are you?
3: Good, good. How are you?
0: I am good, Tina ji. Tina, usually मेरे दिमाग में लंबी लड़कियां होती हैं. आपकी हाइट लंबी है?
3: नहीं.
0: चलो कोई बात नहीं, जितनी दी है.

0: उतनी अच्छी है। ये बताइए, आपको मालूम है कि मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ फ्रॉम द न्यूअर मूवी विच इज है जवानी दो इश्क होना है।
1: हाँ जी,
0: बताइए
1: अनु
0: जी,
1: मलिक।
0: अनु मलिक पुरानी वाली का है मैम, बट कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं लूंगा इन्हीं को वापस, बिकॉज आई थिंक शी वॉज द वन विद द मोस्ट करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग मैम, दोबारा से वेलकम। आपने क्या नाम बोला था अपना?
1: मिरल।
0: मिरल जी, आपने कहा था कि इसमें है तनिष्क बागची।
1: हाँ
0: चलो बढ़िया, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हो, 5 तारा का खाना आपको मुबारक। होल्ड ऑन द लाइन फॉर मी, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर। यस, इट इज तनिष बागची, उसके साथ साथ वाइट नाइस कलेक्टिव्स हैं ये जिन्होंने इसको म्यूजिक दिया है, जावेद मोहसिन उनके साथ हैं, एंड स्कोर दिया है राजू सिंह ने। कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जी मैं मिरल को ऑन विनिंग दिस 5 तारा का गिव अवे विच इज राइट हियर इन द कॉलोनी। फॉर नाउ इट इज वन मोर ट्रैक एंड उसके बाद छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के उस पार मोर फन कमिंग अप।
2: सारेगा।

0: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
1: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
3: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
2: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
11: प्लान या होप?
10: मतलब है
11: प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
10: ओके, तो मेरा वाला होप है।
11: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
10: क्यों?
11: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
1: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
12: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
15: क्या मतलब?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
18: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
19: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
6: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
19: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
1: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
3: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: 28 degrees in Celsius is the current temperature right here in DFW. 28 degrees Celsius. India वालों को अभी भी यही समझ आता है कईयों को मेरे जैसों को. 82 is the temperature in. No, 82 कहाँ से हो गया भैया? यहाँ पे आएगा temperature ये रहा. हाँ 82 है यहाँ भी. हवाई में भी 82 है, यहाँ भी 82 है. तो भैया आप अगर यहाँ पे हैं तो समझ ले कि आप हवाई में हैं, बिकॉज वेदर इज द सेम बोथ द प्लेसेस. इट्स 82 डिग्रीज. इट्स अ क्लाउडी डे टुडे एंड टुमारो वी आर गोना लुक एट 35% चांस ऑफ रेन. वेदर इज बेटर, 72 फॉर अ लो, 88 फॉर हाई. टुडे इज गोना बी 84 व्हिच वी ऑलरेडी सॉ, सो नाउ इट्स ऑन द डाउन साइड. द होल वीक इज गोना बी इन लो 70s एंड अपर 80s and 90s, so we're still not touching 100s. The good part is that the whole week is going to be full of clouds, majority of the week, except 2 days. And बारिश की जो chances हैं वो कहीं ना कहीं बनते रहेंगे. तो अगर आपने पकौड़े शकौड़े बनाने हैं ज़रूर बनाइए. और कहते हैं जो भी अच्छी चीज़ें करते हैं ना वो ज़माने के साथ शेयर करनी चाहिए. तो मुझे बता सकते हैं कभी भी. ऑफिस मेरा 121 और मकीनी 121 और कस्टर पे है मकीनी में. तो वहाँ जाते जाते आते जाते कुछ ना कुछ कर दीजिएगा करेगा. लेडीज़ के लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट है ऑल द फीमेल्स आउट देयर, यार अपनी जो डीपी लगाते हो ना वो अपनी लेटेस्ट पिक्चर की लगाया करो. बाकी लोगों को जाके आपकी डीपी में बाकी पिक्चरें देखनी पड़ती हैं पहले, फिर पता लगता है ओहो अच्छा ये है. इसलिए यार पहले ही हमारा काम इजी कर दो ना, डीपी में ही अपनी बेस्ट पिक्चर लगा दिया करो. स्टूडियो का नंबर 9722355555. वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इन जनरल. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर बंदे को अपना ख्याल रखना जरूरी है भैया. एंड कहते हैं ना अगर खुद नहीं रखोगे तो कौन आएगा, कोई और थोड़ी आएगा आपका ख्याल रखने के लिए. यस यू हैव वाइफ्स, यू हैव पार्टनर्स, बट यार गिव देम देयर ड्यू क्रेडिट. इतना कुछ करते हैं ऑलरेडी, और जो अपना है वो तो भैया खुद को ही टेक केयर करना पड़ेगा ना. सो टेक टाइम आउट टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय श्री कृष्णा ज्वेलर्स. दे आर ओपन फॉर यू इन फ्रिस्को. बहुत अच्छा स्टोर है. एंड इफ यू हैवन बीन देयर देन डेफिनेटली गो ट्राई देम आउट. क्लासिक गोल्ड डिजाइंस टू स्पार्कलिंग डायमंड्स, फ्रॉम इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोल्की कलेक्शंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड इट्स क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइफ स्पेशल मोमेंट्स. नाउ वेलकम coming you at their new location 13145 suite 220. ये मेन स्ट्रीट फ्रिस्को में है. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टिंग फाइन ज्वेलरी एंड चेरिश मोमेंट्स सिंस 1967. मुझे एक सवाल है आप लोगों से, लड़कियों को और बच्चों को फोन क्यों नहीं देना चाहिए? लड़कियों को और बच्चों को फोन व्हाई नो गिव? यू टेल ना. स्टूडियो लाइन ओपन फॉर यू 9722355555.
1: നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ, ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ.
0: സാരേ ശരി കുടിയ ചല ഗൈ. യാർ ഛോട്ടി സി കറക്ഷൻ ഹൈ, ലഡ്കിയോ കോ ദിൽ ഓർ ബച്ചോ കോ ഫോൺ നഹീ ദേനാ ചാഹിയേ. വൈ സോ?

0: टोटा टोटा टोटा टोटा टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, इन्होंने टोटा टोटा कर दिया। बड़े मतलब अपने रास्ते खुद निकाल लेता है बॉलीवुड। गुड इवनिंग फन एशिया, बच्चों को फोन और लड़कियों को दिल क्यों नहीं देना चाहिए?
1: दोनों तोड़ देते हैं।
0: दोनों तोड़ देते हैं। अच्छा जी, आपका नाम
1: यास्मीन।
0: याशनी, आपने तोड़ा है
1: कोई
0: क्या?
1: ने मेरा थोड़ा, मैंने
0: नहीं,
1: किसी का
0: फोन
1: नहीं
0: फोन
1: दिया।
0: ही नहीं दिया आपने किसी को। चलो अच्छी बात की याशनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हाँ जी भैया, तो बात यह है कि लड़कियों को दिल और बच्चों को फोन क्यों नहीं देना चाहिए? गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, पीछे कौन है जो इतनी इंटरेस्टेड है हमारे से बात करने में, बैकग्राउंड में? हेलो,
2: हेलो,
0: हाय बडी, मैं बडी और बिड्डी, गुड इवनिंग, कौन, व्हाट्स योर नेम?
3: माय नेम इज रिया।
0: हाय रिया, हाउ आर यू?
3: हाय, I'm good.
0: Okay.
3: I'm 8 years old.
0: Very good, Ria. This is not the kids segment. Can I ask your mom to come back on the line or daddy?
3: Okay.
0: Thank you.
2: Hello. Actually, she want to tell the answer. So
0: उसमें क्या होता है कि मेरा जो थोड़ा सा वक्त यहाँ पे है वो बस यू हो जाता है। आप बताइए, according to you, लड़कियों को दिल और बच्चों को फोन, why not?
2: हाँ, मतलब इसका तो आंसर था कि ज्यादा एडिक्शन हो जाता है एंड बच्चों को तो
0: नहीं, वो तो ठीक हो गया, लड़कियों को दिल
2: लड़कियों को देना चाहिए एक्चुअली।
0: अच्छा, देना चाहिए दिल, क्योंकि कमजोर होता है लड़कियों का दिल, दो लेके चलेंगी। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। लेट्स सी हु डू वी हैव नेक्स्ट। गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, वॉल्यूम लो, योर वॉल्यूम अप, कौन बोल रहा है? हेलो,
4: हाय मार्विन,
0: हाय, कौन सी श्रुति?
4: सॉरी,
0: आपका नाम क्या बोली?
4: ज्योति।
0: ज्योति जी, कैसी हैं?
4: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: ऊपर वाला मेहरबान, खुली मेरी दुकान, समोसे खत्म हो चुके हैं। अभी बताइए कि ये जो मैंने पूछा है, लड़की को दिल और बच्चे को फोन, व्हाई नो गिव?
4: बिकॉज दे प्ले विद इट।
0: हाँ, ये था जवाब जो मैं ढूंढ रहा था। जी हाँ, बच्चों को फोन और लड़की को दिल इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो फिर खेल गेम खेलने लग पड़ते हैं।

0: लोगों को ना नाम का बड़ा होता है कि यार मैं ये नाम हो गया जी, वीरेंद्र ठाकुर नाम हो गया, बड़े पावरफुल पावरफुल नाम होते हैं। बट मुझे एक बात आपको बतानी है कि नाम में ना कुछ रखा नहीं होता साहब। नाम में क्या रखा, क्योंकि विश्वजीत हाँ जी, विश्वजीत नाम का आदमी भी बीवी के आगे तो हार ही जाता है, इसलिए नाम में कुछ नहीं रखा है। सिर्फ काम पे ध्यान दीजिए, ब्रेक के बाद मैं वही करने आ रहा हूँ, डोंट गो एनीवेयर।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
8: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
7: कहाँ?
9: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
10: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब।
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
13: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
12: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो।
14: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
11: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
16: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
17: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
18: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स, लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
19: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
0: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
19: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
15: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
20: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
15: के टू ड्राइव मतलब?
20: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
15: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
20: 100%
21: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402। Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
22: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.

कल ना मैंने अपने पापा को फोन पे क्रिप्टो करेंसी शेयर मार्केट के बारे में काफी देर तक बताया। फिर उन्होंने पिंड में मेरी जमीन थी वो, मेरा एक छोटा सा मकान वो, मेरा एक बुल्ट मोटरसाइकिल पुराना जो चलता नहीं है, और एक फिएट गाड़ी जो मेरे नाम थी वो अपने नाम करवा ली।

0: जिंदगी उन्हीं की रंगीन होती है जनाब, जिंदगी उन्हीं की रंगीन होती है जनाब जो रंग बदलना जानते हैं. सो कीप दोज कलर्स चेंज्ड एंड कीप योर आइज 2020 विद विजनरी आई केयर.
1: Classic Indian craftsmanship reimagined for today. Introducing PMJ Jewels Frisco, bringing over 60 years of jewelry excellence where timeless tradition meets modern elegance. Discover stunning gold, diamond and bridal collections designed for every celebration, milestone and occasion. Join us from the 20th of June and throughout the grand opening week for exclusive offers, exciting celebrations and opportunities to win beautiful jewelry pieces. Trusted by generations and And proudly associated with celebrated actor Mahesh Babu and Sitara Ghattamaneni. Visit PMJ Jewels Frisco and discover jewelry that tells your story. PMJ Jewels Frisco, tradition crafted, style defined.
2: Mamu, देखो क्या हो गया.
3: ओ क्या हो गया?
2: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
3: ओए जर्मन का कमाल है.
2: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
3: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार.
4: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
5: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
6: अरे यार, डालस में पंजाब?
7: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहां बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म.
8: From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
9: Jis baat ka dar tha, wohi hua. Lymphosarcoma of the intestine.
10: अरे कहना क्या चाहते हो?
11: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई. लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी. अब टेंशन का टाइम गया. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं. हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर. फ्रिस्को, प्लेनो, मेकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, इरविंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू. कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट.
12: भूख लगी
13: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
14: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
15: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
16: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
17: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनके जिम्मेदारी. Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
18: Calculating route, rerouting.
17: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
18: Location upgraded, now heading to India Bazaar Fort Worth.
17: क्यों?
18: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
17: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
8: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
18: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
17: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

नींबू मिर्ची वाले टोटके आपको याद है, नींबू मिर्ची वाले टोटके। तो ये नींबू मिर्ची वाले टोटके जो है ना जनाब, इन्होंने बड़ा मेरे साथ खेल खेला है। तो दुकानों के बाहर ये टोटके ना नींबू मिर्ची वाले लटकाए जाते हैं, और अगले शनिवार यानी कि जिस सैटरडे को लगाते हैं उसके अगले शनिवार को, सैटरडे को नए नींबू मिर्ची लगाते हैं, और जो पुराने नींबू मिर्ची होते हैं उनको सड़क पर फेंक देते हैं। अब बचपन में हमें सिखाया गया था कि ये जो सड़क पर नींबू मिर्ची गिरते हैं ना, कोई बच्चा अगर इसको कुचल देता है तो उसे बाद में बदसूरत पत्नी मिलती है। अब मैंने मेरे दोस्त को सुना, वो कहता है यार मैंने ये बात ना फॉलो कर ली, बिल्कुल मेरे दिल में घर कर गई थी, और मैं स्कूल आते जाते समय या मार्केट आते जाते समय हमेशा अगर नींबू मिर्ची देखता था तो उससे बच के निकल जाता था। नतीजा कहता बहुत अच्छा रहा, घर वालों ने मुझे खूबसूरत पत्नी दिला दी। शादी के कुछ वर्षों बाद कहता मैंने पत्नी को ये बताया कि कैसे मैं नींबू मिर्ची वाले टोटकों से बचता रहता था, और इसीलिए वो उसे मिल गई। उसकी पत्नी ने या हमारी भाभी ने जवाब दिया कि बेटा ये कहावत बचपन में मैंने भी सुनी थी पर मैंने विश्वास नहीं किया, और मैं नींबू मिर्ची कुचलती गई, बस फिर तुम मिल गए।

आप में से कितने लोगों ने नींबू मिर्ची को पैर से कुचला है और कई लोग कितने लोगों बच के निकल गए मुझे जरूर बताइएगा। बंदा ये बिंदास है जी, नाम मारविन दास है। 626 इन द स्टूडियो क्लॉक। मंडे की शाम जबरदस्त बनाने का काम है हमारा, बस यही है, इसी काम के लिए खुलती है दुकान। 5 से 7 मंडे टू थर्सडे रहता है जी मेरा साथ आपके साथ साथ। पीएमजे ज्वेलर्स की बात की थी मैंने ब्रेक पे जाने से पहले, एंड दे आर कमिंग टू फ्रिस्को, द वेट इज ओवर। पीएमजे ज्वेलर्स इज कमिंग टू फ्रिस्को, ब्रिंगिंग ओवर 60 years ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। एक्सप्लोर स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन। ग्रैंड ओपनिंग सेलिब्रेशन हो रही है जी स्टार्टिंग June 20th, 20 जून को ये आपके लिए होगा बिल्कुल। एंड एंजॉय एक्सक्लूसिव ऑफर्स जो उसी दिन अवेलेबल होंगे, एक्साइटिंग फेस्टिविटीज एंड चांसेस टू विन ब्यूटीफुल ज्वेलरी पीसेस, फ्री में जीत सकते हैं। प्राउडली एसोसिएट विद महेश बाबू एंड सितारा घट्टा मानिनी, PMJ इज अ नेम ट्रस्टेड बाय जनरेशंस। विजिट PMJ ज्वेल्स फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट एंड डिस्कवर ज्वेलरी दैट रियली टेल्स your story. We were also talking about men's mental health or men's health or mental health in general as we're celebrating men's health week this week, which is from the 15th onwards. I want to share some light on a website called NAMI, NAMI.org, which is National Alliance of Mental Illness. हमारे एक राकेश जी कॉलर हैं जिन्होंने ये कॉल करके मुझे ये जानकारी दी, एंड आई थिंक I'd love to share that with you, that if you know anybody who's struggling with mental health, there is an organization by the name of NAMI, which is National Alliance on Mental Health, Mental Illness, and inki website bhi isi naam se hai, NAMI. Go check it out and suggest it to somebody who you think really needs this attention towards their mental health. Ek sawal hai mujhe aap logon se, sir, garmiyan jab aane shuru hoti hai na, to garmiyon ke saath saath kisi kisi part mein world ke aati hain barsaatein, aur kai jagah pe dekha jata hai ki garmiyon mein aur ye barsaaton ke time pe जो आंधी तूफान है ना वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये आंधी तूफान गर्मियों में क्यों ज़्यादा बढ़ते हैं? वाई इज़ मोर आंधियाँ, शूँ शूँ हवाएं हैं जी, अफरा तफरी हवाओं की, ये क्यों होता है गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा? 9722355555 अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और सोच के बताएं कि ये तूफान, ये हवाएं, ये गर्मियों में क्यों आती हैं यार?

क्या बात है डैलस, मतलब इतना ही दिमाग, थोड़ा सा तो मुझे लगता है आप में इतनी टैलेंट है यार। थोड़ा विचित्र सोचिए, थोड़ा सोचिए कि ये जो गर्मियों की छुट्टियां, मतलब गर्मियां हैं, इसमें हवाएं ज़्यादा क्यों चलती हैं, आंधी तूफान क्यों आते हैं, ये थोड़ा आपके दिमाग से मेरे को बताओ ना यार, आपको क्या लगता है। देखो मेरे को तो पता है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि फिर मैं तो बताऊँगा ही, मैंने तो फिर बताना ही है ना, है ना। वो जैसे वो आए थे ना हमारे एक बड़े तगड़े कलाकार, आए हाय ओए होए लोटा लोटा लोटा लोटा। खैर ये लोटे की बात नहीं, बात ये हो रही है कि हवाएं गर्मियों में आंधी तूफान ये क्यों ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली छुट्टियों के टाइम पे, ये आंधी तूफान बारिशें, वाई आपकी टिप्पणी क्या कहती है, आपका दिमाग क्या कहता है, पब्लिक द वो नेशन वॉन्ट्स टू नो। अब तो बताइए कि मैं टेबल को ठोक के मारूं और फिर आपसे पूछूं कि द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि वाई दिस गर्मी में हवाएं एंड आंधियां तूफानिंग कमिंग, व्हाट्स हैपनिंग, यू टेल मी।

0: आओ आओ खुल के कहो अपने अपने दिल की बात कि ये जो हवाएं हैं, आंधियां, तूफान हैं, ये गर्मियों की छुट्टियों में, गर्मियों में, बरसातों में ज्यादा क्यों बढ़ जाती हैं। गुड इवनिंग फनेजिया, हु इज दिस?
1: हाँ जी, मैं वृषाल बात कर रहा हूँ।
0: वृषाल, कैसे हो आप वृषाल?
1: हाँ जी, बस बढ़िया एकदम। आप कैसे हो?
0: मैं बढ़िया हूँ एकदम। वृषाल भाई नेपाल से हो? राम रो सब?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं तो मुंबई से हूँ।
0: मुंबई से हैं तो वड़ा पाव खिलाओ, तो वड़ा पाव खिलाओ कभी।
1: अरे जरूर आइए, जरूर आइए,
0: बताइए।
1: अभी तो मौसम भी वैसे ही बना हुआ है।
0: मौसम वैसे ही बना हुआ है, बस किसी को लोग बना ना दें हमें और किसी और को। ये बताएं कि ये जो आंधी तूफान है, ये गर्मियों में क्यों ज्यादा देखने को मिलता है?
1: देखिए, गर्मियों के मौसम में सबको छुट्टी मिल जाती है और वो पूरे मस्ती में आ जाते हैं, तो इसलिए वो एकदम।
0: आप वो कहते ना, मंजिल के करीब थे पर थोड़ा चूक गए। कोई बात नहीं वृषाल, देखते हैं और कौन है हमारे साथ। गुड इवनिंग फनेजिया।
2: गुड इवनिंग मार्विन जी, हाउ आर यू?

0: इसलिए वो एकदम
1: आप कहते ना मंजिल के करीब थे पर थोड़ा चूक गए, कोई बात नहीं विशाल। देखते हैं और कौन है हमारे साथ। गुड इवनिंग फनेजिया।
2: गुड इवनिंग मार्विन जी, हाउ आर यू?
1: मार्विन जी क्या कहते हो आपने, मतलब ऐसे ना किया करो, कुर्सी कासी टूट जाएगी किस दिन मेरी। मार्विन तक ठीक है। हाँ जी
2: ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द लैंड एंड द एयर।
1: आप ज्योग्राफी स्टूडेंट हो के बायोलॉजी?
2: नहीं, मैं कोई स्टूडेंट नहीं।
1: अच्छा, आप स्टूडेंट नहीं है, कभी तो हो रही होंगी।
2: इज इट द राइट आंसर?
1: देखो राइट तो हर चीज होती है, बट कभी कभी लेफ्ट जाने का जो मजा आता है वो अलग होता है। थोड़ा सा मैं अलग सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग से सोच के बताइएगा। थोड़ा और सोचे कि अगर मार्विन इस बात का जवाब देता तो क्या करता। बहुत बहुत थैंक यू आपके कॉल का। लेट्स सी, वी हैव नेक्स्ट। गुड इवनिंग फनेजिया, हू इज दिस?
3: हाय, दिस इज आशा।
1: आशा जी कैसी हैं?
3: मैं बढ़िया।
1: आशा तो मैं भी यही करता हूँ कि आप बढ़िया रहें। अब ये बताएं आशा जी कि ये व्हाई इज दिस आंधी तूफान ओले, व्हाई इन दिस समर हॉलीडे टाइम?
3: मुझे लगता है कि गर्मियों की छुट्टियों में जो सारे बच्चे मम्मी लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं, उसको ठंडा करने के लिए भगवान जी हवा चला देते हैं।
1: उसको ठंडा करने के लिए भगवान जी वो कर देते हैं। चलो, क्या आपने आशा बोला? आशा, देखो आपके नाम में ही आशा है, मतलब सच ए पॉजिटिव थिंकर यू आर, है ना? वेरी गुड, बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप है वैसे मेरा, बाकी बाद में देखेंगे। गुड इवनिंग फनेजिया, हु इज दिस?
4: गुड इवनिंग मार्विन, दिस इज जॉयस पटेल।
1: जॉयस पटेल भाई, क्या हाल है?
4: बस बढ़िया, आप?
1: बस चल रहा है हमारा भी भाई, मालिक ने जॉब खोली हुई है, पैसे दे रहे हैं टाइम से, सब ठीक है।
4: अच्छा, बढ़िया बढ़िया, वो चलना चाहिए ना,
1: वही चलता रहेगा, तभी तो यहाँ से मुंह से कुछ निकलेगा नहीं, तो मुंह मेरा सील हो जाता है, टांके लग जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये हवाएं गर्मी तूफान में ये क्यों, समर हॉलीडेज, व्हाई डज दिस हैपन भाई?
4: वही गर्मी की जो छुट्टियां होती है तो बादल और वो सब भी मस्ती करते हैं, इसीलिए ज्यादा होता है।
1: गर्मियों की जब छुट्टियां होती हैं तो बादल भी मस्ती करते हैं। हमारे पंजाब में एक बादल थे, उनकी मस्ती पूरी दुनिया भर में फैली थी, प्रकाश सिंह बादल उनका नाम है। अब हमने बादलों से मस्ती, हमने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी। गुड इवनिंग, रेडियो वॉल्यूम कम कर लो, अपना बढ़ा लो, अब मेरी आवाज दिल से सुनो, आपके सिर्फ पर्सनल फॉर यू मैन। कौन बोल रहा है? गुड इवनिंग।
5: हाय मार्विन, ज्योति हियर।
1: हाय ज्योति जी, फिर से आप मेरे पास वापस आई हैं, क्या बात है, कैसी हैं आप?
5: मैं बस रास्ते में हूँ।
1: रास्ते में हो तो रास्ते को तो हम एंटरटेनिंग करेंगे। अब ये बताओ कि गर्मियों में ही क्यों, छुट्टियों में ही क्यों ये हवाएं तूफान आते हैं?
5: उनको भी बहुत गुस्सा आता है ना गर्मी देख के।
1: उनको किनको, उनको किनको, अब अपने पति को हवाओं और तूफान का नाम दे दोगी आप? उनको भी बड़ा
5: बिल्कुल उनको,
1: चलो आगे देखते हैं क्या होता है। उनको भी बड़ा गुस्सा आता है। रेडियो का वॉल्यूम कम कर लो, आपके पीछे डिस्टरबेंस बहुत है, कहाँ फैक्ट्री में हो कहीं? हेलो, आप ही से बात कर रहे
5: हैं?
1: आप ऑन एयर हो, बस अभी मतलब सेलिब्रिटी बनना आपका रहता है, वो हम कर लेंगे आज कोशिश। नाम बताइए।
5: मेरा नाम नीलम है।
1: क्या क्या है, क्या है, क्या है, क्या
5: है?
1: एक मिनट, एक मिनट, नीलम है आपका नाम
5: जी?
1: नीलम जी बताइए कि हवाएं ये गर्मियों में छुट्टियों में ही क्यों हमें तंग करती हैं, व्हाई?
5: यूं होता है क्योंकि ये जियोग्राफी से रिलेटेड है।
1: अच्छा,
5: जो हॉट एयर जो है आपका, जो पानी
1: क्या बात है, मतलब यू आर सो वाओ, आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग। एक बार शीशे में जरूर आप अपने आप को देखना और फिर से कहना यस, लुकिंग लवली लाइक अ वाओ। अच्छा जी, बात पता है क्या है, आप लोग ऐसी परेशान हो रहे, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। होता क्या है जनाब कि जितने भी आंधी तूफान ये जो हैं ये गर्मियों में ही क्यों आते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बीवियां अपने बच्चों को लेके गई होती हैं मायके और वो धीरे धीरे वापस आ रही होती हैं, समझ रहे हो?
6: आंधी तूफान, बीवी निकली है मायके से वापस घर की तरफ, हु

0: भाई देखो, जब हीरो लैंड होता है तो हवाएं आती हैं, हैं? मंदिर के दिए कुछ कुछ करने लग पड़ते हैं, माओं को पता लग जाता है। तो भाई इसी तरह जब मायके से बीवियां वापस घर की तरफ आना शुरू करती हैं तो शू शा ओले किड़किड़, ये सब हमारे लिए इशारा होता है कि आने वाली है वो, बेटा तैयार हो जा।
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
4: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
3: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
4: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
5: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
6: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
6: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
8: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
9: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
10: Chicken banana. Chicken banana?
11: Bro, banana nahi. Banana. Matlab, make the chicken right.
12: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Is shahar ko hua kya? Kahin pe अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
17: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
18: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
19: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2,
20: मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
21: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
22: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
23: लिया।
22: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
23: नहीं आया।
22: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
24: Visit www.sanadainc.com today.
25: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

Music has no boundaries and no language is what I believe. If it sounds good to you, keep it in your playlist. And that is what we are doing for World Music Day, celebrating that on the 21st of June right here on Fun Asia Radio. And aap us World Music Day ka part ban sakte hain by creating your own playlist. All you have to do is go to funasia.net. That's the website where you have to go, and you'll find a tab that says World Music Day. When you click that tab, it's going to open up a form for you, jahan pe aap apne naam ke saath apne different genres milenge aapko music ke wahan pe, aur aapko apna अपना फेवरेट गाना उस जॉनरा का डालना है. एंड इफ योर प्लेलिस्ट गेट सिलेक्टेड, यू विल गेट अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम फन एशिया, एंड योर नेम विल आल्सो बी अनाउंस्ड ऑन द 21st ऑफ जून राइट हियर एट फन एशिया रेडियो. सो गेट गोइंग, अपनी खुद की प्लेलिस्ट बनाइए एंड शेयर दैट विद फन एशिया एट funasia.net. वर्ल्ड म्यूजिक डे कॉन्टेस्ट इज हैपनिंग देयर फॉर यू. विद दैट इज टाइम फॉर मी टू से बाय बाय, अडियोस, गुड नाइट. बट एज ऑलवेज आई ऑलवेज टेल यू टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज यू आर द यूनिवर्स दैट exist around you is only because of you. तो अगर अपना ख्याल ही रखेंगे तो किसी और का क्या रखेंगे भैया. We are also celebrating World's Men Health Week this week starting today. तो अपने men का और दुनिया में हर बंदे का अगर आप ख्याल रख सकते हैं, कुछ advices दे सकते हैं, you can create some difference in their life by giving them time, do so. If you need time for yourself, take that time out. Holidays, you know, मेरे से सीख लीजिए यार कुछ. अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं फटाफट अपना बैग पैक करता हूँ और निकल जाता हूँ. I don't care about much that is left behind, because it is me time, and me time is the most important time. With that, it is bye bye, adios. After me is Hippie Ippy the Hippie, entertaining you all the way from 7 to 10. Good night, Shabakhair. Keep me in your prayers as I do the same.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
4: अरे सारे तो सेम है।
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
4: ओ हाँ, ये तो अलग है।
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
5: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
5: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो इन हूं।
11: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
12: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
11: K2 ड्राइव मतलब?
12: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
11: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
12: 100%
13: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402। K2 ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
14: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा is now open at a new location in Allen. वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। Enjoy fine dining experience और पंजाबी buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panchtara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
5: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी,